0: Bringing South Asia closer, more closer. Funasia, 104.9 FM.
1: Hi, Dallas ki janta ki haal chaal. Yes, this is your bestie, Ippy the Hippie, in the house. क्योंकि 7 बज चुके हैं. दैट इज राइट, 7 बजे. आपको पता है क्या टाइम होता है? इट इज अ टाइम फॉर एन इवनिंग इन डैलस. दैट्स राइट गाइस, मेरे साथ गाओगे तो मुझे अच्छा लगता है. बट आई नो मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बट आई कैन फील ऑल दैट एनर्जी, ऑल दैट पॉजिटिव वाइब्स. ओके, टुडे इज ऑल अबाउट वाइब्स. नो, टुडे इज टोटली नॉट अबाउट वाइब्स, बट आई होप You are having a wonderful vibey day, and I hope aapki drive back from home is smooth and hassle free. Main jab pata yahan aa rahi thi, when I was driving on 75, wahan pe dikhaya ki there's an accident, it's gonna take like 45 minutes, 50 minutes, because I drive from Dallas. Lekin surprisingly mujhe utna time nahi laga, kyunki by the time I got to the highway and I started driving, ट्रैफिक क्लियर हो चुका था. तो आई होप यू ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ लक. यस यस यस, नोबडी लाइक्स गेटिंग स्टक इन ट्रैफिक. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट द

भाई लड़कियों की तरह घर भी ऐसे होने चाहिए कि आप कोई पड़ोसी देखे तो वो भी हो जाए चुल. ओ माय गॉश, ये कितना सुंदर घर है. वैसे मेरा एवरी टाइम आई ड्राइव बाय प्रेस्टन हॉलो या हाईलैंड पार्क, दैट वाला दैट एरिया साइड ना, मुझे हमेशा उनके इतने अच्छे अच्छे घर देखकर लगता है, ओ एम जी, काश मेरा भी ऐसे ही घर होता. वेल दैट इज माई ड्रीम. तो अगर आपका भी ऐसा कुछ ड्रीम है, वे यू वॉन्ट बिल्ड अ ब्यूटिफुल हाउस, अपने सपनों का घर, देन यू नीड टू रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज, क्योंकि सिंस 1998 दे हैव हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टू विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन, वेदर इट्स फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग. कॉल 972-245-5626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम. तो भाई सपनों का घर सबके बस में है, वैसे यू नो आगे बोलते हैं.

And the next song is a request for Rafi and Safi. उन्होंने नूरान सिस्टर का गाना रिक्वेस्ट किया. भाई नूरान सिस्टर के तो इतने अच्छे अच्छे इतने सारे गाने हैं. But I'm going to play you this one from the movie Highway. Aren't they amazing?

भाई आई लव दैट सॉन्ग. आपने कुछ टाइम पहले, आई डोंट नो इफ यू गाइज आर दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मे बी माई एल्गोरिदम इज डिफरेंट फ्रॉम योर एल्गोरिदम, जैसे कि होता है. बट बिकॉज आई लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक एंड आई लॉट लिसन टू अ लॉट ऑफ लाइक यंग म्यूजिकल क्रिएटर्स एंड एवरी थिंग, तो आई केम अक्रॉस दिस रीमिक्स ऑफ दैट पर्टिक्युलर सॉन्ग एंड इट वॉज एब्सोल्यूटली फायर. इट वॉज बाय दिस सम अमेरिकन डीजे, और उसने उस गाने को लेकर ना इतना मज़ेदार रीमिक्स बनाया था, एंड इट स्टिल केप्ट दी इंटेंसिटी ऑफ द वोकल्स ऑफ नूरान सिस्टर्स. तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अच्छे इसमें कोई कमी हो गई रीमिक्स में, रीमिक्स बिगाड़ दिया. नहीं, इट एक्चुअली एडेड टू दी पैशन दैट दे ऑलवेज सिंग विद. ओके, तो गाइज आगे बढ़ते हुए, अगर आप कभी किसी एक्सीडेंट वगैरह में फंस जाते हैं, देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कॉल अप उमर ख्वाजा. पहले पुलिस को बुलाओ, फिर उमर ख्वाजा को बुलाओ और बोलो कि अरे हमें बड़ी जोर से चोट लगी है, हमारी गाड़ी को ठोकर मार दी, ला ला ला ला. क्योंकि अगर आप चोट नहीं बोलोगे तो देन दे कांट रियली हेल्प यू, बिकॉज दे आर पर्सनल इंजरी अटर्नीज. वेदर यू आर इंजर्ड इन अ कार, ट्रक एंड स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट, दे विल कम एंड हेल्प यू एंड हेल्प यू गेट द मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व फ्रॉम योर इंश्योरेंस कंपनीज. बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज क्या कहती है, दे ऑलवेज से दैट ओ वी हैव डिटर्मिंड दैट यू आर एट फॉल्ट, या फिर द अदर पार्टी वॉज नॉट एट फॉल्ट, वी आर नॉट गोना पे एनी मनी. इस तरह से जो होता है उसका चक्कर होता है, तो इसीलिए मेक श्योर यू गिव देम अ कॉल सो दैट ही कैन डील विद द इंश्योरेंस कंपनीज एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन हीलिंग. कॉल 469-900, ओ 469-300-5046, लेट मी रिपीट दैट, 469-300-5046, और विजिट अटर्नी ओमर डॉट कॉम. मुझे बीच में अभी किसी ने पूछा, भाई आप जब रेडियो पे जब ये अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं, ये फोन नंबर दो बार क्यों बोलते हैं? भाई हम फोन नंबर दो बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बारी में लोगों को समझ नहीं आता है और जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, कभी गलत भी हो सकता है, इसीलिए दो बार बोलते हैं जस्ट टू मेक श्योर.

0: गाइज वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक. कितना मजेदार गाना था. मोहब्बत बुरी बीमारी, मिले भी तो भी बीमारी.
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. लर्न हाउ अ personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है। हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
10: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
9: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
10: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
11: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
12: वी नीड टू टॉक।
13: अब क्या हुआ?
12: Nothing. It's not you.
13: Oh no.
12: It's the distance.
13: Distance? We live 10 minutes apart.
12: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
11: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
14: Breaking news. Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
16: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
15: Fikar not. We have the perfect solution.
11: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
17: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

एंड गाइज वी आर बैक. अगर आपको पता नहीं था, करण औजला आया था कुछ टाइम पहले यहीं पर डैलस में. एंड आई पर्सनली लव दिस आर्टिस्ट. इन्होंने वो वाला गाना भी गाया है, हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा. आई थिंक ही इज ऑल्सो संग दैट वन एंड लॉट्स ऑफ अमेजिंग रियली रियली कूल सॉन्ग्स. सो गाइज आगे बढ़ते हुए, बाय द वे डिड यू नो ही इज एक्चुअली फ्रॉम कैनेडा. ही इज अ कैनेडियन पंजाबी आर्टिस्ट हुज मेड इट क्वाइट बिग इन बॉलीवुड ऑल्सो नाउ. तो या आई थिंक इट काउंट्स फॉर समथिंग. बाय द वे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप यू रनिंग अ बिजनेस एंड यू डोंट गेट हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर और फ्रॉम योर कंपनी, देन डोंट वरी बिकॉज पैशन हेल्थ डायरेक्ट इज हियर एंड दे इट्स लाइक अ प्लान फॉर $85 अ मंथ. तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड सो मच मोर. कॉल 214-666-6259, 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम. रिमेंबर गाइज, दिस इज नॉट रियली हेल्थ इंश्योरेंस. दिस इज फॉर पीपल हु डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस एंड कैन नॉट अप्लाई फॉर इट. देर आर एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस फॉर दिस ऑल्सो. ऑल्सो बाय द वे, पैशन हेल्थ की जो लोकेशन हैं अर्विंग एंड फ्रिस्को, दे आर नाउ ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज एज वेल. तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स कीप गोइंग इन टू इट. जैसे आपको पता है, 8 o'clock हमारा गिव अवे होता है. 8 o'clock वी गोना प्ले आवर गिव अवे गेम. लेकिन फॉर नाउ लेट्स जस्ट लिसन टू सम अमेजिंग सॉन्ग्स एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन दैट वी वर हैविंग येस्टरडे, विच वॉज बेसिकली अबाउट यू नो वाई पीपल आर फेलिंग एट रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग इन द मॉडर्न डे. बिकॉज ऑनेस्टली सिंस द एंट्रेंस ऑफ द डेटिंग एप्स, गेम्स हैव चेंज्ड, यू नो दिस रूल्स हैव चेंज्ड, रूल्स ऑफ डेटिंग हैव चेंज्ड एंड अ लॉट ऑफ मेन स्पेशली फेस दिस प्रॉब्लम वेयर दे डोंट नो हाउ टू रियली अप्रोच वुमेन और गर्ल्स. सो टुडे आई एम गोना गिव यू सम थिंग्स टू कीप इन माइंड. वी आर गोना टॉक अबाउट what you can do when you're trying to approach someone in terms of dating or asking someone out, how to engage in conversation, all of those things. So stick around, it's going to be real fun.

एंड गाइस वी आर बैक. जैसे मैंने आपको बोला था कि 8 o'clock इज गन बी आवर गिव अवे गेम, सो स्टिक अराउंड. टुडे वी आर प्लेइंग वर्ड अंताक्षरी बिकॉज आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल गेम एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस आर एंजॉयिंग इट एज वेल. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स कंटिन्यू विद आवर शो. येस यू आर लिसनिंग टू इपी द हिप्पी ओनली ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM. एंड बाय द वे मुझे अभी ना मेरे फीड पे एक गाना आया है which features Ranbir Kapoor, and somehow he's wearing shoes like Michael Jackson, and I'm like, wait, what song is this? I don't even know. So maybe we'll check it out after this one, because I want to play this one for you today.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
9: कितनी लंबी लिस्ट है?
8: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
9: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
11: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
12: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
13: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
12: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
13: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
11: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
14: ये तारा वो तारा हर तारा।
15: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
16: That garba was totally worth it. We had so much fun.
17: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
16: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
6: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
18: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
19: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

एंड गाइस वी आर बैक. हाँ जी, हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन पहले मैं हूँ कौन, ये तो मैं बताए ही भूल जाती हूँ हर बारी. वैसे जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको तो पता ही है कि मैं कौन हूँ, मुझे दोबारा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फॉर दोज ऑफ यू हु आर ट्यूनिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर अगर आपको लगता है मैं कोई और आरजे हूँ, कई लोग मुझे भी कॉल करके पूछते हैं आप नवनीता जी हैं ना, मैंने कहा नहीं यार, मैं इप्पी द हिप्पी हूँ. मैं 7 से 10 बजे तक ये मेरा टाइम रहता है. बट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. हाउ एवर, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गो अहेड एंड प्ले द गेम. गाइज, दिस इज इप्पी द हिप्पी एंड यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग एम Dallas, that is right, absolutely correct. So without further ado, let's go ahead and play our giveaway game. Lekin giveaway hai kya? Giveaway is of course from the one and only, that one that all of you guys are waiting for. Yes, it is the Fun Pizza Kitchen ka giveaway. You can win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen, which you can redeem it this weekend by going there. Guys, I haven't announced the question, so if you're calling me to answer the question, pehle question to sun lo, uske baad call karna. So Fun Pizza Kitchen has brand new Mexican inspired flavors called Fiesta Veggie, Fiery Pollo Loco, Seafood and so much more. And the best part is they're going to be open till 3 a.m. They're going to be open till 3 a.m. Especially for those Navratra nights, especially if you're going out late फॉर गरबा और रात के 10 बजे 11 बजे आपको नहीं पता कि कहाँ जाएँ खाने, तो फन पिज्ज़ा किचन 3 बजे तक खुला है. सो मेक श्योर यू गो दैट. ठीक है, तो लेट्स प्ले आर गेम. आर गेम इज़ वेरी सिंपल, इट्स द वर्ड अंताक्षरी. मैं आपको 30 सेकेंड्स बजाऊंगी एक गाने का. 30 सेकेंड भी नहीं, 10-15 सेकेंड ही बजा दूंगी, क्योंकि आप लोग वैसे ही, यू गाइज आर अमेजिंग एट दिस गेम. हुएवर गेट्स द फर्स्ट कॉल, यू हैव टू पिक वन वर्ड फ्रॉम द लिटल फ्रेज दैट आई प्ले फॉर यू. कोई भी गाना जो बजेगा उसका कोई भी एक वर्ड आप उसमें से निकालिए, ठीक है, और उस वर्ड से आपको एक गाना गाना है. तो एक ही प्राइज है मेरे पास, तो इसीलिए हुएवर इज द फर्स्ट कॉल, जो मेरे यहाँ पे लैंडलाइन फोन पे जिसका नंबर सबसे पहले ब्लिंक होता है, उसी को ये जाएगा प्राइज. ठीक है, और आपको द ट्रिक इज यू कांट जस्ट से ये नेक्स्ट सॉन्ग इज साहिबा. नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा, प्रॉपरली गाना पड़ेगा कि अच्छा साहिबा ना पूरा, यू हैव टू सिंग द होल मुखड़ा. यू कांट जस्ट से द नेम ऑफ द ट्रैक, यू हैव टू सिंग इट. अगर आप सिंग नहीं करेंगे तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा. ओके, दैट्स द रूल. एमी में थोड़ी नाम दे देंगे किसी को $10. चलो, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो अहेड, दिस इज योर सॉन्ग.

0: कोई भी एक वर्ड उठा के आपको गाना गाना है इसमें से, कोई भी एक वर्ड. एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी?
1: Hey, I can hear you.
0: Okay,
1: can
0: great.
1: You?
0: Yes, I can hear you. Perfect. पहले तो अपना नाम बताइए and then sing the song for me.
1: I am that unfortunate Rishi who always tries to call you guys and सिर्फ एक ही टाइम पे पिक होता है जो आपके आपके शो में होता है.
0: अरे तो भाई हमारा कोई पुराना रिश्ता होगा पिछले जन्म का, इसीलिए शायद मैं सिर्फ मैं ही आपके कॉल्स उठाती हूँ.
1: चलो बढ़िया, कोई नहीं. बट
0: एनी
1: वे आपका जो गिफ्ट है, मैं बहुत दूर रहता हूँ, गिफ्ट तो ले नहीं पाऊंगा, बट आई विल प्ले द गेम.
0: चलो ठीक है, डन. यू कैन टेक द गिफ्ट एंड यू कैन पास इट ऑन टू समवन एल्स. ओके, यू कैन गिव द गिफ्ट टू अ फ्रेंड और समवन, दैट्स ओके. यू जस्ट आई विल टेल यू हाउ टू रिसीव इट. ओके, चलो लेट्स गो अहेड. ओके, टेल मी द नेम ऑफ द
1: सॉन्ग. यू,
0: या गो अहेड.
1: प्लेड द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जूम बराबर जूम एंड इट्स The song, one of the song, Jhoom Barabar Jhoom. उसमें तीन अलग अलग वर्षन के गाने, एक वर्षन का Jhoom Barabar Jhoom.
0: हाँ, पर वो क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन है कि जो मैंने आपको क्लिप बजाया उसमें से गाना.
1: I need to pick a word. I will pick a word. चांद.
0: Okay, go for it.
1: चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया
0: पर. चलो साथ में
1: जाऊं. चलो गाओ.
0: चलो 1 2 3 4 बस इतना सा है. ओ, मैं तो
1: मैं स्टार्ट से करना था. ओके,
0: कोई बात नहीं. कांग्रेचुलेशंस ऋषि, यू हैव वन द गिव अवे. यूहू, तालियां बजाते हैं भाई आपके लिए.
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
0: ग्रैंड क्लैप्स. These are called grand claps. Okay.
1: मुझे ये भी नहीं पता कि आप gift hamper और gift giveaway कहाँ से दे रहे हो. I just start driving to Walmart. I started radio and I listened to your game and I just called you. I don't even know what's the gift and where is the gift coming from.
0: Okay, I'll tell you what. I'm gonna play the song and then I will tell you exactly what you have won and how to redeem it and etc. And then you can decide if your clothes are far away from the place. ठीक है, but stay on the line. Okay?
1: Yeah, I'm here. Go
0: okay. Alright guys, you guys enjoy this little song जो हमने शुरू किया था. मैं ऋषि को उसका information और prize वगैरह देकर आती हूँ. आप ये गाना enjoy करिए and I'll see you shortly. And for those of you who are still trying to call me, we have found our winner unfortunately. So, not unfortunately, fortunately. लेकिन आप कल try करिए दोबारा game खेलना. Okay? तो चलो, let's go ahead.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
2: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
9: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई बैंगलोर पुणे चेन्नई हैदराबाद एंड दिल्ली एनसीआर के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट्स फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट
10: And we are back, you guys. Yes, जाने से पहले हम ब्रेक में जाने से पहले we were talking about communication skills. भाई चाहे आप किसी को भी बात करो अपने दोस्तों से बात करो बैंक एम्प्लॉय से बात करो एक आरजे से बात करो या फिर यू आर अप्रोचिंग अ गर्ल और अ गाय एट अ ग्रोसरी स्टोर एट अ जिम एट अ रेस्टोरेंट एट अ बार इट डजेंट मैटर किसी से भी आप बात करो इट इज़ वेरी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू मेक योर इंटेंशंस क्लियर एंड बी गुड एट कम्युनिकेशन इफ यू जस्ट काइंड ऑफ वेगली से हे व्हाट यू सेड ऑफेंडेड मी इफ द अदर पर्सन कम्स अक्रॉस एंड आस्क्स ओह श्योर बट व्हाट इज इट दैट ऑफेंडेड यू वेल आई कांट रियली टेल यू दैट इट्स जस्ट व्हाट यू सेड ऑफेंडेड मी आई एम लाइक And then you're like, okay, but what was it? अगर आप specify नहीं करोगे तो बंदा अगर काम भी करना चाहेगा उसमें काम कैसे करेगा है ना ये वाली चीज़ जो है ना I feel like I have heard this not for the first time, but a lot of people, including a lot of my Indian Americans who live in America especially, they have also told me the same thing. A lot of us, when we come from India or Pakistan or whichever part of South Asia you're coming from, we are not equipped with communication skills. Communication is an art that is developed over time, where you have to be learned, where you have to learn to be intentional and specific. Hum log kai baar ek call aayi thi mujhe bahut hafton pehle mujhe call aayi thi. To he was this person, he's like, pata hai, every time I interact with my friends from India, main usse bolta hu ki hey, do you want to get dinner? And the response he always gets is sure. But you know, sure is just like, hey, what's going on? Let's hang out this weekend. Sure. Sure is not an answer to the question specifically. It just says, yeah. Sure is not a specific answer. If you do want to create some plans or something, you have to be specific. Sure. What time? When are we going? La la la la la. And a lot of this has happened with my own friends as well. Main unke koi bhi sawal poochti hoon. Main kehta, are you feeling okay? They respond with, sure. But sure is not the response to, are you feeling okay? Sure is a response to, hey, do you want to do this at this particular time? And then you can say, sure, I'll be there at 7 p.m. That is what we are talking about. You have to be specific. We will talk more about this, lekin after this chota sa gana.

So guys, let us continue our discussion about how to make a conversation with a stranger. That's right, you guys. कई बार हम लोगों क्या होता है ना, आई मीन वी आर नॉट इक्विप्ड, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आई एम नॉट गोना रिपीट दैट, बट वी आर नॉट इक्विप्ड विद द राइट कॉन्वर्सेशन स्किल्स. हाउ टू मेक अ न्यू फ्रेंड, हाउ टू अप्रोच अ डेट, हाउ टू बिहेव एट अ ग्रोसरी स्टोर. यू नो, लाइक समटाइम्स यू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर. आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ आर लिसनर्स एंड ही वॉज लाइक कि यू आर एब्सोल्यूटली राइट. समटाइम्स इवन दो वी हैव मूव्ड अब्रॉड, वी हैव नॉट फॉरगॉटन आर साउथ एशियन ट्रेड्स एंड हेरिटेज एंड समहाउ यू नो

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: भूख लगी
4: है या बस कुछ exceptional खाना है?
5: Street style chaats, rich Awadhi flavors, and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है. It's what your mood is actually craving.
4: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
8: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

भाई हवा के झोंके तो बड़े अच्छे चल रहे हैं, मौसम बदल रहा है गाइस थोड़ा। अभी हवा भी थोड़ी ठंडी ठंडी हो गई है। इट फील्स लाइक फॉल, बट यू नो दिस इज फेक फॉल राइट, बिकॉज हमारे पास समर टू आने वाला है जो कि आई थिंक एंड ऑफ सेप्टेम्बर तो चल रहा है, एंड ऑफ अक्टूबर एक समर टू आता है, उसके बाद आता है प्रॉपर फॉल जो सिर्फ एक हफ्ता रहता है। टू ऑल माई न्यू डैलस और DFW रेजिडेंट्स, यू डोंट नो दिस बट टू माई ओल्ड पीपल यू नो दिस, वी हैव समर वन एंड देन वी हैव समर टू। समर टू इज अबाउट टू कम, बट हाउ एवर जब तक ये अच्छा मौसम चल रहा है, गो एन्जॉय द वीकेंड, गो टू फ्लेवर लाउंज दिस वीकेंड। दे हैव देयर न्यू ऑल वीकेंड लंच बुफे जस्ट फॉर लाइक $25, स्पेसिफिकली $24.99। माउथ वाटरिंग डिशेज, लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल, सो मच मोर, एंड देयर बफे गोज फ्रॉम सैटरडे, इट गोज ऑन सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 12 PM टू 3 PM। दे हैव अ न्यू लोकेशन विच इज एट फ्रिस्को ऑन 5855 प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। सो फ्लेवर लाउंज, दैट्स द प्लेस यू नीड टू ट्राई आउट दिस वीकेंड। अभी किसी ने मुझे बताया कि हमारी एडवर्टिजमेंट सुन के दे ऑल्सो ट्राइड, वो वॉज दैट रेस्टोरेंट, द फूडस्तान इन ऑबरी, एंड कैसा था वो, आप जब तक हम ट्राई नहीं करोगे बताओगे नहीं। हाउ इज द रेस्टोरेंट, हाउ विल वी नो, सो लेट अस ऑल्सो नो वेन यू गो एंड ट्राई दीज न्यू प्लेसेस। तो गाइज एक गाना बजाते हैं एंड देन वील कम बैक एंड देन वील फिनिश द कॉन्वर्सेशन दैट आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट।

then maybe you meet someone there. Casual public places where people are relaxed and open to chatting. For example, a bookstore, a coffee shop, a dog park, or just any park, या फिर थ्रू फ्रेंड्स एंड शेयर्ड कम्युनिटीज. मे बी योर फ्रेंड्स ट्राई टू फिक्स यू अप, एंड इफ दे डू ट्राई टू फिक्स यू अप, यू नो, हाउ आर यू गोना हैव अ कॉन्वर्सेशन. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज हाउ टू रीड द रूम, लाइक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ वॉट द अदर पर्सन इज बिफोर यू एक्चुअली स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन. वी विल गेट मोर इन टू डिटेल विद दैट वन आफ्टर द सॉन्ग.

Guys, this is Ippy the Hippie, and you're listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, and this is my show, An Evening in Dallas. भाई मुझे एक अपना ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म तो करना था. आई वॉन्टेड टू गो ओवर लाइक हाउ टू रीड द रूम, अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज, फेशियल क्यूज वगैरह वगैरह. हाउ एवर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसीलिए आई एम गोइंग टू फिनिश दिस कॉन्वर्सेशन, लेकिन आज नहीं. आप कल वापस आइए, तभी आप तो रेडियो सुनते रहते हैं ना. आई नो यू गाइज आर ऑलवेज लिसनिंग. सो कम बैक टुमारो, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू रीड द रूम, हाउ टू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज, यू नो, थिंग्स लाइक यू शुड डू, आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या दिखता है, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड देन आई विल ऑल्सो गिव यू सम ओपनर्स. डोंट गो विद अ क्रिंज लाइन कि आपको तो भगवान ने चांद से पता नहीं ऐसे वगैरह वगैरह, जो क्रिंज वाली जो लाइन्स होती है ना, डोंट यूज दोज, बिकॉज वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट एंड इट्स अ टोटल फेल. द मोर नेचुरली यू आर द बेटर इट इज. तो इसीलिए कम बैक, वी गोना टॉक मोर अबाउट दिस स्टफ टुमारो. टुडे वी हैव रन आउट ऑफ टाइम. लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आप इवेंट कोई प्लान कर रहे हैं, आपके फैमिली में कोई शादी है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है, या फिर एंगेजमेंट है, या फिर ग्रेजुएशन पार्टी है, या हाउस वार्मिंग है, या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन है, यू नीड टू रीच आउट टू वैनेसा इवेंट्स, बिकॉज यू वांट टू बी द चीफ गेस्ट एट योर ओन पार्टी. यू डोंट वांट टू बी लाइक गोइंग अराउंड सर्विंग स्नैक्स टू पीपल, बिकॉज इट्स सो मच वर्क, राइट? ऑल्दो सर्विंग स्नैक्स इज नाइस, हाउएवर you want to still enjoy the party and you want to be like the special person at your own party, right? I mean, I know I want to do that. So, isliye you should try and outsource it to Vanessa Events. They bring it all together, chahe wo venue ho, decor ho, photographer ho, hospitality, catering, everything is done by Basera Grand. You can call Hari Basera at 469-442-8770. Or, yeah, there is no website. Just call them. That's the only thing. 469-442-8770. This is Vanessa Events. They'll do all the work for you.

गाइज, एज आई वॉज लीविंग, हमारे पास बड़ी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट आई प्यारे लाल जी की फॉर हिज वाइफ शरीन, जिनका आज जन्मदिन है. तो शरीन जी, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम फन एशिया रेडियो एंड फ्रॉम मी हिप्पी द हिप्पी. और ये आपके लिए स्पेशल गाना डेडिकेटेड टू यू बाय योर हस्बैंड.

स्तंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, वाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फन एशिया रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

नमी है। एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: सुबह ड्राइव पे
1: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो
2: दोपहर फोन पर
3: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो
0: शाम को घर पर
4: You are listening to Fun Asia Radio.
0: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो
2: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स while ट्रैकिंग कॉल्स बुकिंग्स और visits. A 360 degree advertising solution for your business. So customers can hear about you, see you and connect with you.
0: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
2: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
5: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
4: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Phanasia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कुछ भी नहीं तेरे।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: 104.9 FM Funasia. Funasia. Fun Fana Fun Done.
1: हाँ भाई सेठी।
2: हाँ जी मनीपा जी।
1: पहुंच गए हैं?
2: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
1: ओ पार्टी दी कसरत है तेनू, हाले पार्टी करदा दे है तू।
3: पाजी उस गोरे से घर लेके बाद एक बार भी यहाँ आए हो?
1: हो गए बहुत साल, हो गए। दादी नु मिलना आया सी एक बारी।

0: father will lose quite a lot of money if it doesn't, won't he?
1: American actor James Dean became a symbol of the confused, restless, and idealistic youth of the 50s. He died in an automobile crash as he drove to a car rally in Salinas, California, on today's date in the year 1955.
2: Huh?
1: When the Porsche he's driving hits a Ford Tudor sedan at an intersection.
0: There's a diamond ring worth about that. At least my father told me that's what he paid for it.
1: Only one of his movies that you're listening to right now, East of Eden, had been released at the time of his death.
2: I reckon it would.
1: But he was already on his way to superstardom, and the crash made him a legend.
0: Yes?
1: His name, James Dean.
2: You forgave him because you threw a ring of his worth $3,000 into the river.
0: That's right.
2: And you...
1: Riots erupt over the desegregation of Ole Miss. In Oxford, Mississippi, James Meredith, an African-American student, escorted into the University of Mississippi campus by U.S. Marshals, setting off a deadly riot. Two men were killed before the violence was quelled by more than 3,000 federal soldiers. And the next day, Meredith successfully enrolled and began to attend classes amid continuing disruption on today's date in 1962. As on that same day, activists Cesar Chavez and Dolores Huerta established the National Farm Workers Association, and their organization becomes a successful labor union for Mexican, American, and Filipino farm workers and a nationally recognized civil rights movement in the United States. The Boston Bar, that base sitcom called Cheers, where everybody knows your name, premiered on NBC on today's date in 1982. A mixture of comedy and soap opera romance, the show ran for 11 seasons.
3: All those nights when you've got no lights, the check is in the mail.
1: Max Verstappen was born on today's date in 1997 in Belgium, the race car driver competing in Formula One under the Dutch flag. Sports youngest race winner, youngest person to start an F1 race, driving for Red Bull Racing. He won four consecutive F1 Drivers Championships. Robert Kardashian died on today's date in 2003 in Los Angeles. The Armenian-American businessman and lawyer in Los Angeles who became well known in the 1990s for his involvement in the O.J. Simpson murder trial.
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
8: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
9: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
10: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
11: डील कहाँ?
10: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
11: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है. अरे यार, घर मिल गया.
12: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड ऑल्सो कैश बैक एट क्लोजिंग.
8: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल स्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
12: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
8: बिल्कुल. विजिट अजय प्रभु.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
13: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: That garba was totally worth it. We had so much fun.
18: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
17: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
19: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba Fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
20: Order. Mr. Impressions, campaign ka result.
21: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
20: Miss Clicks?
22: 100 logon ne click bhi kiya.
20: Customers kitne aaye?
23: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
22: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.

0: It's humid. It's already windy. We will touch the 90s again today. And hopefully that's the last time I'm going to say 90s. The rain will be here soon, later in the day, and go on overnight. There may be some chances of hail, stronger wind and stronger rain also goes all the way from tonight into Friday, and some remnants on Saturday and Sunday also. We're looking at about 2 to 4 inches in this whole thing all till the end of the week. Flood watch starts at 4 p.m. today and goes on till Friday morning. Now, y'all be careful. Y'all asked for rain. Well, here you got it. I think we should be doing much better for our deficit, which is now at about 4.5 inches after this bout of rain that we are going to see in the next few days. Get ready to enjoy it. Be careful. Make sure you have your umbrella in the car. Drive carefully. And I am sure that it's going to be an altogether enjoyable rain experience after so long. And also, ladies and gentlemen, we're going to round off this hour of the program. I do have another very busy hour coming up for you. So stay with me here. I'm going to make sure that you're completely entertained as well as informed. In the next hour, we'll have world news, we'll have a guest on our airwaves, and plenty of music all lined up for you right here on the airwaves of the Fun Asia Network. This is your morning drive time special, and I'm in your cars with you at 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 to 8:00. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
9: फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
10: कितनी लंबी लिस्ट है?
9: बस 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
10: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
11: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
12: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
13: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
14: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
15: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
14: Fikar not. We have the perfect solution.
15: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
16: Stop! Festive fashion check! Navratri ke outfits ready hai?
17: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
16: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat. Overtime.
17: To solution?
15: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
18: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
19: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
18: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
19: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
18: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
20: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
21: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
0: On this last day of the month, this is the last hour of my program. Let's say bye to September.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Dad, property papers kahan hai?
4: Laptop mein.
3: Investment?
4: Google Drive.
3: Insurance? Passwords?
4: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
3: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
5: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess, leave a plan.
0: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
6: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
7: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
8: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
7: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
2: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन। Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
9: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: सुबह ड्राइव पे
12: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो।
13: दोपहर फोन पर
14: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो।
2: शाम को घर पर
15: You are listening to Fun Asia Radio.
2: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
16: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक, एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स while ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स। अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू, सी यू एंड कनेक्ट विद यू।
2: टू एडवर्टाइज कॉल 469-424-3188 और ईमेल sales@funasia.net.
16: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be

0: सुनिए
1: आप, आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था, 5-स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: That garba was totally worth it. We had so much fun.
4: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
3: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
5: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba Fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
6: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
7: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
8: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
7: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
8: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
9: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस। नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
9: Barista House, richness of biryani bliss.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
15: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ अनीशा रेडियो पर।

फिल्म एक दूजे के लिए से लिया गया ये गाना कमल हसन और रति अग्निहोत्री पर पिक्चराइज किया गया था। खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। यस, दिस इज अमरीन हसनाथ फिलिंग इन फॉर रमिता हु इज फिलिंग इन फॉर मी टू, यानी कि शोरबे का शोरबा। 8:48 ऑन दिस 30th of September। उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और आज के इस ऑसम 80s के सेगमेंट को इन्जॉय कर रहे हैं जिसमें हम 80s की मशहूर फिल्मों के गाने आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये अगला गाना भी उसी कड़ी का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले कुछ मौसम का हाल बताए दें। इट्स प्रीटी nice outside. We're looking at 82 degrees Fahrenheit in the McKinney area. Today's high 88 and a low of 77 degrees Fahrenheit. Enjoy it while it lasts.

मुझे खबर है। अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज किया गया ये गाना किशोर कुमार जी की आवाज में सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द फिल्म कालिया। 80s आई वुड से वाज अ डेकेड दैट वाज रेन्ड बाय अमिताभ बच्चन। जी हाँ, उस जमाने में वो ही बादशाह थे। ही वाज द नंबर वन बॉलीवुड किंग। एंड दिस नेक्स्ट सॉन्ग उन्हीं की एक और सुपरहिट फिल्म का गाना, याराना टाइटल ट्रैक।

तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। मुझे तो लगता है कि जो याराना इस फिल्म में दिखाया गया था, आजकल वैसी दोस्तियां हैं ही नहीं। आई डोंट नो, मे बी आई एम बीइंग अ लिटल टू जजमेंटल, पर बस मुझे लगता है ऐसे कि 80s और 90s की जो फ्रेंडशिप्स थी, आजकल वो हमें नहीं दिखाई देती। एंड आई गेस जो दोस्ती बचपन में परवान चढ़ती है, शायद उस तरह की दोस्तियां आप जवानी में नहीं कर पाते, और लाइक लेटर इन लाइफ, यू नो, सम ऑफ अस माइट गेट लकी, बट आई डोंट नो कि वो दोस्तियां कितनी पायदार होती हैं। बट यू नो, इफ यू आर फॉर्चुनेट, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई साथी है, तो फिर डेफिनेटली आप बहुत खुशनसीब हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। बार बार शुक्रिया इसलिए अदा करती हूँ क्योंकि अब तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से ऑप्शन हैं लोगों के पास, लेकिन द फैक्ट कि आपने 104.9 FM को चूज़ किया अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। ऑसम 80s का सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है एक और बहुत ही शानदार गाना, आपके लिए आपकी मोहब्बत में।

0: फिल्म कुदरत से लिया गया ये गाना किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया था। आई होप यू एंजॉयड दैट सॉन्ग। ऑसम 80s विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pete's Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
4: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
5: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
4: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
5: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
3: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
6: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: That garba was totally worth it. We had so much fun.
9: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
8: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
10: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: व्हाट वुड हैपन टू योर बिजनेस इफ अ की ओनर, पार्टनर और टॉप एम्प्लॉई पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
7: Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
14: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
9: to pehle check kar lo us pe deal hai ya nahi.
15: Deal? Kahan?
9: Simple, Paasya pe. Introducing Paasya. Discover exciting deals and offers at restaurants near you right now. Open Paasya, see what's around you, find a deal and grab it before it's gone.
7: Download Paasya, that's PAASYA today, because deals dur nahi, paas hai.
16: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

तुझे देखा है। जफर साहब की फरमाइश पर सुनवाया हमने आपको लता और किशोर कुमार की आवाज़ में गाया हुआ ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म दिले नादा। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इट्स 8:11 ऑन दिस 30th of September 2026। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, फिलिंग इन फॉर रमीता टुडे टिल 12:30 PM। ऑसम 80s का सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। एज सच रिक्वेस्ट तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन जब उन्होंने फरमाइश की इस गाने की, मैं इनकार नहीं कर पाई बिकॉज इट मैचेस आवर थीम। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा। If you are ever involved in a car accident, a truck accident, or a slip and fall incident, you need to get in touch with attorney Umar Khwaja. Aap apni healing par focus karein while attorney Umar Khwaja fights your case for you. You don't have to pay him anything unless he wins the case for you. So, nothing to lose, give him a call. 469-300-5046. Or you can visit attorneyomar.com. And of course, I know right now you're not in any situation like that. Lekin agar aap number pehle se save rakhenge, that way, in case the need arises, you have the phone number handy. All right, let's continue the segment with this next track.

लोग फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में पिक्चराइज किया गया था ये पद्मनी कोल्हापुरी और ऋषि कपूर पर. इट इज 14 मिनट्स पास्ट 11 और आप सुन रहे हैं ऑसम 80s. आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग 80s में थे और या 80s की फिल्में या गाने आपको याद हैं, लेकिन अगले सवाल का जवाब देने पर, एज एन अगले गाने से रिलेटेड जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपने जवाब दे दिया तो डेफिनेटली मान जाऊंगी मैं आपको और साथ साथ इनाम भी मिलेगा आपको फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. ऑलराइट, सो अब सवाल ये है कि मैं गाना प्ले करने जा रही हूँ, आपने ना सिर्फ फिल्म का नाम बताना है बल्कि सिंगर का नाम भी बताना है. सो कोशिश कीजिए, सुनिए ये गाना और याद करने की कोशिश कीजिए कि 80s की ये कौन सी फिल्म है और सिंगर का क्या नाम है. हाँ, एक क्लू मैं आपको दूंगी कि एक्ट्रेस ही सिंगर भी है. सो द एक्ट्रेस वॉज नॉट ओनली जस्ट द एक्ट्रेस इन द मूवी, वो सिर्फ ना सिर्फ हीरोइन थी बल्कि ये गाना उन्हीं की आवाज में है. 9722355555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. सुनिए गाना, याद करने की कोशिश कीजिए, बताइए मुझे क्या नाम है इस सिंगर स्लैश एक्ट्रेस का और जीतिए इनाम फन पिज्जा किचन की तरफ से. 9722355555.

हम वफा करके भी तन्हा रह गए. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. इस गाने की शायरी, अंदाज, एवरीथिंग वाज जस्ट अमेजिंग एंड इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट बैक व्हेन द मूवी केम आउट इन 1982. और जिन तमाम लोगों ने सोचा कि ये आवाज़ सलमा आगा की है और फिल्म का नाम निकाह है, बिल्कुल सही सोचा आपने. लेकिन बाजी ले गए सिद्धार्थ साहब. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू कॉल. Congratulations, you have won yourself a gift card from Fun Pizza Kitchen, home of the best desi style pizza in DFW. Lete hai ek choti si commercial break. When we come back, we will continue Awesome 80s. Thank you for tuning in.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: सुबह ड्राइव पे
2: यू आर लिस्निंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो।
0: दोपहर फोन पर
3: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो।
1: शाम को घर पर
4: You are listening to Fun Asia Radio.
1: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
0: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक, and with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings or visits. A 360 degree advertising solution for your business, so customers can hear about you, see you and connect with you.
1: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
0: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
5: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
6: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
6: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
6: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
6: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: वांट टू एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज इन इंडिया? यू डोंट नीड टू फ्लाई टू इंडिया। The Grow Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Grow Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
9: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
10: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 p.m. टू 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
8: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
10: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways and save big for your store?
8: When is it?
10: Thursday, October 29th, Friday, October 30th and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
8: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
11: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। इट्स 33 मिनट्स पास्ट 11 ऑन दिस 30th ऑफ सितंबर 2026। लंच टाइम आने वाला है। क्या प्लान है आपका? घर में कुछ बनाया है या बाहर जाकर खाने का प्लान है? वेल गेस व्हाट, तंदूरी फ्लेम इज अ ग्रेट प्लेस। यहाँ मजेदार बटर चिकन से लेकर बिरयानी, पनीर टिक्का और दाल मखनी सभी कुछ मिलेगा लंच या डिनर के लिए। तंदूरी फ्लेम इज लोकेटेड इन गार्लैंड एंड गेस व्हाट, देव गॉट अ ग्रेट हैप्पी आवर व्हिच दे रेफर टू एज फ्लेम आवर, व्हिच इज मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 5 to 8 p.m. जिसमें यू कैन ऑर्डर एनी टू एंट्रीज and receive one complimentary appetizer. Now that's a great deal. So take advantage of that and you can get all the details by visiting tandooriflametx.com. इस वक्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है सेगमेंट ऑसम 80s, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं 80s की फिल्मों के हिट गाने।

सत्ते पे सत्ता फिल्म का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप एज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट ऑसम 80s और उसी का हिस्सा है ये अगला गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म कुली जो कि 1983 में रिलीज हुई थी।

मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की आवाज में कुली फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप, जो अमिताभ बच्चन और रति अग्निहोत्री पर पिक्चराइज किया गया था। आई होप यू गाइज एंजॉयड माय सिलेक्शन इन ऑसम 80s। दिस सेगमेंट ब्रॉट टू यू बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स, बेहतरीन हीरे जवाहरात यानी कि गोल्ड डायमंड्स पोल की एंड ब्राइडल कलेक्शन, बल्कि उनके पास इतने बढ़िया डिजाइन है, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी स्टाइल हो आपका, यूल फाइंड द परफेक्ट पीस ऑफ ज्वेलरी एट श्री कृष्णा ज्वेलर्स लोकेटेड ऑन 13145 मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को।

सुन रहे थे आप पुकार फिल्म से लिया गया ये गाना समंदर में नहा के, जो अमिताभ बच्चन और जीनत अम्मान पर पिक्चराइज किया गया था। आवाज़ थी आरडी बर्मन की। इससे पहले जो हमने कुली फिल्म का आपको गाना सुनाया था, एंड आई एक्चुअली सेड मोहम्मद अजीज वाज़ द सिंगर, इट वाज़ एक्चुअली शबीर कुमार। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे फ़ोन करके, नॉट शबीर कुमार, आई थिंक Shabir Kumar, was it Shabir Kumar? I think it was Shabir Kumar. Anyway, we had one of the people called in and clarified that for me, and I think I made that error. Thank you so much. I appreciate it. अच्छा लगता है कि हमारे listeners जो हैं बहुत ही knowledgeable हैं, well informed हैं, और कभी हमसे भूल चूक होती है तो हमें बता देते हैं. So I appreciate that. It's 55 minutes past 11 and we're going to go ahead and wrap up awesome 80s. यानी कि अब play करने जा रही हूँ मैं 80s का आखिरी गाना, as in इस segment का आखिरी गाना.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Yaar, festival season aa raha hai aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
7: Kitni lambi list hai?
6: Bas 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
7: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
8: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
15: अजी सुनते हो?
16: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
13: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
17: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
18: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
17: कैसे?
18: पेज 3 ईटरी?
17: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
18: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
17: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
19: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
20: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
21: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
22: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
23: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
22: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
24: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर?
25: उमर ख्वाजा.
26: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
0: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

2026 की मोस्ट ट्रेंडिंग गाने अब हम आपको सुनवाएंगे अगले 20 मिनट के अंदर अंदर. उससे पहले एक क्विक शाउट आउट टू तारा कमर्शियल एनर्जी व्हिच हैज बीन सर्विंग द टेक्सास बिजनेस ओनर्स सिंस 2002. सो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर You need to switch to Tara Commercial Energy. Why? There's so many reasons. They've got great rates, reliable service, and they will customize the energy plan to suit your business needs. All you got to do is call them 844-428-2808 or visit taraenergy.com.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas. अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट. और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: 5 to 8, straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
4: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
1: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
3: Phone uthaye, number dabaye.
4: 347-449-4242.
5: Welcome to the Shadi Memory Test. Rapid fire round start karte hain. Decorations ka color.
6: Next question.
5: Bride ki entry song.
6: Yaad nahi.
5: बफे में क्या था?
6: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी.
1: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं. गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस. कॉल 972-905-5449. सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर.
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
1: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
9: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
10: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.com.

Hello, namaste, and good afternoon, Dallas. This is your radio host, Ayushi. One Asia 104.9 FM पे आपका स्वागत है. और आज मौसम बदल रहा है डालस का, टेक्सस का, प्लेनो का, एंड देयर इज अ प्रेडिक्शन ऑफ हैवी रेनफॉल एंड देयर इज ऑल्सो अ फ्लड वॉच. तो भाई मौसम तो बदलते हुए देख लिया है हमने. इट्स ऑल क्लाउडी आउटसाइड, सो इफ इट रेन्स बी प्रिपेयर्ड, ट्राई टू स्टे एट होम, बिकॉज बदलते मौसम के साथ मिजाज ना बदल जाए कहीं. फिलहाल अपने शो को शुरू करते हैं और कुछ अच्छे प्यारे मज़ेदार गाने, खूबसूरत गाने आपके लिए लेकर के आते हैं.

दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. एंड अब हमारे इस सेगमेंट में कुछ ऐसे गाने बजाते हैं जो थोड़े बारिश के मौसम की याद दिला दें. बिकॉज देखिए अभी तो वेंसडे मॉर्निंग इज स्टार्टिंग आउट क्वाइट वार्म एंड विंडी, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है और धीरे धीरे बारिश शुरू होगी. बट दिस बारिश इज गोइंग टू बिकम यू नो अलॉट एज द डे पासिस बाय. एंड थंडरस्टॉर्म्स है और आफ्टरनून तक काफ़ी ज़ोर से बारिश होने की संभावना है ऐसा कहा जा रहा है. सो द एरियाज ऑफ द वेस्ट मेट्रोप्लेक्स आर अंडर अ मार्जिनल रिस्क ऑफ सीवियर वेदर अ लेवल 1 out of 5. तो शुरुआत में तो कुछ नहीं है बट प्राइमरी थ्रेट्स बिगिन गस्टी विंड्स अप टू 60 miles per hour एंड स्मॉल हेल स्मॉलर देन क्वार्टर्स एंड टोर्नाडो का थ्रेट नहीं है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए. बट डैलस वालों के लिए फ्लड की वार्निंग ज़रूर है कि भाई 2 से 4 inch तक की बारिश एक्सपेक्टेड है क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी बढ़ चुकी है, सॉइल बहुत सूखा हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस चांसेस ऑफ फ्लड. और ये सारा न्यूज़ चारों तरफ चल रहा है लेकिन इसके बीच में थोड़ी देर मौसम का मज़ा ले लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी वार्निंग आती है तो हम सब उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं. एंड फिलहाल मौसम को नज़र में रखते हुए बारिश के कुछ गाने, तो आप भी मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे कुछ गाने जो बारिश के मौसम में आप सुनना पसंद करते हैं. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555 क्योंकि भाई टेक्सस की गीली धरती की तरह हमारे भी जीवन में बहुत सूखा पड़ा हुआ है. बिल्कुल बारिश नहीं हुई है इस बार और गर्मी ने ना दिमाग खराब ही कर दिया है बिल्कुल. सो वेटिंग फॉर ऑल योर कॉल्स जस्ट फॉर द बारिश नंबर्स.

0: क्यों किया लक्ष्य? क्यों?
1: मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ I love you.
0: बिल्कुल झूठ.

0: बारिश का मौसम, बारिश के गाने, मौसम बदलते ही इन गानों को सुनना, साथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली और कुछ पकौड़े, ये भाई अगर मिल जाए तो बारिश का मज़ा ही अलग हो जाता है। और हमारे यहाँ बारिश पे बहुत सारे गाने बजे हैं, बने हैं, जिसे मैं अभी बजाने वाली हूँ और प्ले करने वाली हूँ आपकी फरमाइश पर, क्योंकि कॉल्स आना शुरू हो गई हैं यार। हमारे कॉलर्स पीछे नहीं रहते, फटाफट कॉल करने लगते हैं। सो आई जस्ट कॉट अ कॉल फ्रॉम आर लिसनर मिस्टर खान, जिन्होंने बताया कि भाई बाहर का DFW एयरपोर्ट के पास है, वो टेम्परेचर है 82 डिग्री फ़ारेनहाइट और बहुत अच्छी हवा चल रही है, काले काले बादल हैं मौसम में। तो इस मौसम में प्यारा सा गाना नेहू और रोहू की आवाज़ में प्ले कर दिया जाए। सो नेहा कक्कर एंड रोहन प्रीत का ये गाना आपकी फरमाइश पर खान सर।
1: कोई रंज फिजा

बारिश का एक और गाना गरजते बरजते बादल के बीच से निकल रहा है। ये खूबसूरत सा गाना नेहा कक्कर और रोहन प्रीत की आवाज में, और मेरे कॉलर्स ने साथ देना शुरू कर दिया। मैंने पहले बता दिया शायद, ये बहुत सारे कॉल्स आ चुके हैं, गाने लाइनअप हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अगला 1 घंटा तो आराम से निकल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप और फरमाइशें दे सकते हैं 9722355555 पे।

है, मैंने पहले ही बता दिया शायद, ये बहुत सारे कॉल्स आ चुके हैं, गाने लाइनअप हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अगला 1 घंटा तो आराम से निकल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. आप और फरमाइशें दे सकते हैं 9722355555 पे. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे, आपका अपना रेडियो फन स्टेशन फन एशिया. कॉल करिए. फिलहाल आपको ये बता दें कि अगर आपके सपनों का घर ना जो आप लेना चाहते हैं वो आपके बहुत ही करीब है, आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना करीब है, क्योंकि ड्रीम होम मॉर्गेज है आपके पास. 1998 मतलब 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज ने परिवारों को की है पूरे नेशन वाइड पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस के साथ घर खरीदने के लिए और रीफाइनेंस करने के लिए. आप इनको कॉल कर सकते हैं 9722455626 पर, या फिर आप dreamhomemortgage.com पे भी जा सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए. ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग, राकेश जी की फरमाइश पर ये गाना है. गाना थोड़ा पुराना है पर मज़ेदार है, सुंदर है और उसकी तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं. प्लीज़ कॉल करिए और गाने बताइए ताकि हम उसको प्ले कर सकें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपने पसंद का गाना बजाएं आज. आज हम आराम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप मेहनत करें, तो जल्दी कॉल करिए और बारिश वाले मौसम के गाने बजाइए, 90s के बहुत सुंदर सुंदर गाने. एक भी 90s का गाना पहुंचा नहीं है अभी मेरे पास.

पानी, बारिश, इसका इंतजार बहुत दिन से हो रहा है भाई। डालस की जनता बारिश के लिए बेकरार है, वरना अभी तक तो कितनी बार बारिश हो गई होती होती है, हेल की वार्निंग्स आ गई हो चुकी होती हैं। तो अभी मेरी कॉलर का फोन आया था पूनम जी का, उनने बताया आयुषी बस गाने की कमी रह गई है, पकौड़े और चाय मैं घर से खा के निकली हूँ, तो प्लीज यार ये गाना सुना दो। गाना थोड़ा है पुराना बट अच्छा मुझे वही लगता है, तो पूनम जी आपके लिए गाना।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
6: कौन सा?
5: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
6: अरे सारे तो सेम है।
5: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
6: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में? सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
9: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
10: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
11: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
12: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
11: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
4: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
13: It's the time to crack out. It's the time to catch up.
14: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
15: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
10: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
16: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
10: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
16: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
14: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill, authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours Monday through Friday from 3 PM to 7 PM.
14: Barista House, richness of biryani bliss.
17: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
18: Dallas Ki Dhadkan, 104.9 FM. Phonasia Radio. 104.9
19: FM. Welcome back after this very short commercial break. Aap sun rahe hain apni host Ayushi ko Phonasia 104.9 FM par aapka apna fun station aur aaj hum yahan par मौसम को एंजॉय कर रहे हैं भाई. भले मेरे पास चाय नहीं है, बस ना ही पकौड़ों की प्लेट पड़ी है, बट फिर भी मौसम को एंजॉय करने की पूरी कोशिश है यहाँ पर, क्योंकि भाई बारिश हो रही है फाइनली. बट ये जो सुनहरा मौसम है, अभी जो आपने काले काले बादल देखे हैं, ठंडी ठंडी हवा देखी है, ये थोड़ी देर में बदलने वाली है बिकॉज देर इज़ अ फ्लड वॉच for a large part of North Texas, including Dallas, Plano, Collin County, Denton County, Tarrant County, Rockwall, Kaufman, Ellis, and several surrounding areas. The current watch is in effect from 4 p.m. today, Wednesday, to 30th September through 7 a.m. Friday. So, bhai, Friday subah tak, 2 October tak, आज 30 तारीख से 2 अक्टूबर तक ये फ्लड वॉच है, ध्यान रखिए. एंड द टेम्परेचर्स इन डैलस कैन रीच अराउंड 93 डिग्री फारेनहाइट दिस आफ्टरनून विद क्लाउडी स्काइज एंड इंक्रीजिंग चांस ऑफ थंडरस्टॉर्म्स. द हीट इंडेक्स कुड अप्रोच 100 डिग्री फारेनहाइट. विंड्स फ्रॉम द साउथ कुड बी अराउंड 15 टू 20 माइल पर आवर विद स्ट्रॉन्गर गस्ट्स पॉसिबल. तो ऐसे ही बारिश होने वाली है, मौसम खराब हो रहा है, ध्यान रखें, घर पे रहें, जरूरत हो तो ही निकलें. आफ्टर द फ्लड वॉच स्टार्ट्स, यू नेवर नो टेक्सास का मौसम कैसे बदलता है, पता भी नहीं चलता है. एंड यस, द चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स इंक्रीज दिस आफ्टरनून एंड स्पेशली टुनाइट. द नेशनल वेदर सर्विस इज फोरकास्टिंग 80% चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन टुनाइट विद एडिशनल रेन एक्सपेक्टेड ऑन थर्सडे एज वेल. तो चलिए मौसम के बारे में बात करते रहेंगे, चेतावनी भी देते रहेंगे और एंटरटेन भी करते रहेंगे अच्छे अच्छे गानों के साथ. हमारा आपको गाने सुनाने के साथ साथ हमें आपको सेफ भी रखना है, इसलिए यू विल गेट ऑल द अपडेट फ्रॉम हियर स्टूडियो फनेशा के स्टूडियो से. आप सुनते रहिए 104.9 FM अपनी होस्ट आयुषी के साथ. फिलहाल इस गाने की फरमाइश आई है सफ़ी की तरफ से.

बापू, मैं जा रही हूँ। जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है। चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

This part of our Barsaat ka Mausam is proudly brought to you by AG Fintax, offering trusted tax accounting, payroll, bookkeeping and business advisory service for individuals and businesses. You can call them at 469-942-9888 or visit agfintax.com today. तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. बरसात का मौसम जोर शोर से आ गया है, मतलब स्टूडियो में तो आ ही गया, ऐसे लग रहा है चारों तरफ बारिश हो रही है. मुझे बस बारिश के गाने सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं और सब कुछ बस वैसा ही हो रहा है. और मेरे पास ना अभी तक 90s का एक ही गाना आया है और वो मैं थोड़ी देर में प्ले करूंगी. देखती हूँ कौन है अगला जो 90s का मज़ेदार सा बारिश वाला गाना लेकर के आता है. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. आप सुन रहे हैं फनेशिया 104.9 FM, अपनी होस्ट आयुषी के साथ.

ओके, टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग. ज्यादा वेट नहीं कराएंगे भाई, इसी गाने का तो इंतजार कर रहे थे हम. 90s का ये नंबर, बारिश की बात हो और ये गाना ना प्ले हो, रोजीना जी की फरमाइश पे अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन.

The 90s ka sabse mazedar barish wala number was finally requested by our listeners. Do logo ne iski firmayish ki thi. Bahut bahut dhanyawad aapka call karne ke liye, Rozina ji and Tahir Ali ji. So yes, hamare show aise hi mazedar hote rehte hain agar aap saath dete rehte hain. Barish ka mausam hai, barish ho rahi hai, hone wali hai. And yes, agar aapke area mein barish shuru ho gayi to ye bhi call karke aap mujhe bata sakte hain, so that I can update all my listeners who are driving, because yes, this barsaat ka mausam is going to turn out to a might turn out into a flood, and we all have to be aware of it. And if you're driving, please be extra careful. This is probably the most important message today. Ki bhai, barish mausam sabka maza lijiye, but flooded roads ke through drive mat kariye. You may not able to see how deep the water actually is, and the road underneath may have been damaged or washed away. ये सारे जो नोटिफिकेशंस हैं या मैसेजेस हैं, ये हमारे टेक्सास वेदर डिपार्टमेंट से आए हुए हैं. सो प्लीज़ ड्राइव सेफ, बी सेफ, अवॉइड गोइंग टू द फ्लडेड अंडरपासेस और लो वाटर क्रॉसिंग्स, लीव एक्स्ट्रा डिस्टेंस बिटवीन योर व्हीकल एंड द कार अहेड, स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग हैवी रेन्स, टर्न ऑन योर हेडलाइट्स, डोंट क्रूज कंट्रोल ऑन वेट रोड्स. अभी बिल्कुल आज सेल्फ ड्राइव करिए, और आप अपनी गाड़ियों को ऑटो पे मत डालिए, ऑटो ड्राइव पे. गिव योर सेल्फ एक्स्ट्रा टाइम, चेक योर रूट बिफोर लीविंग होम, इफ कंडीशंस डिटोरिएट पुल ओवर समवेयर सेफ रादर देन स्टॉपिंग ऑन अ शोल्डर ऑफ फ्लडेड रोडवे. तो भाई प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए और मौसम का मजा भी लीजिए. इफ इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, स्टे एट होम एंड अवॉइड हैवी रेन्स एंड फ्लडेड एरियाज. दिस इज वॉट वी हैव टू टेल टूडे. फिलहाल अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं, बरसात का एक और गाना, 90s का नंबर, कुमार सानू की आवाज. इंजॉय करिए इसको.

लता मंगेशकर की आवाज में था ये गाना। फिल्म का नाम है मंजिल। अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी हैं इस फिल्म में। शो को आगे बढ़ाते हैं, सुंदर सुंदर प्यारे गाने आपके लिए लेकर के आए हैं, वो आपको सुनाते हैं। एक और ऐसा ही प्यारा सा गाना है 90s का, फिल्म दहक से 1999 में आई थी। अक्षय खन्ना और सोनाली बेंद्रे है इसमें। आई थिंक आई लव द सॉन्ग अ लॉट, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये गाना। अगर आपको भी ये गाना पसंद है तो इन्जॉय करिए यार।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाज में था ये गाना। भाई कहाँ गए ये लोग, कहाँ हैं हरिहरन, कहाँ हैं साधना सरगम, इनकी आवाज़ फिर से सुनना चाहेंगे यार हम। इतने सारे लोग वापस आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, वाई नॉट देम। बट एनी वेज, टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, इफ यू आर H1, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प। अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB5, इन्वेस्टर वीजा, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजा, परम लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। For more information on the EB5 Investor Visa program, email info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta. अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, एक और मज़ेदार सुंदर प्यारा खूबसूरत सा गाना बारिश को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हाँ, बारिश के साथ साथ मैं आपको अलर्ट्स भी देना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी, फ्लड वॉच है, सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। आई नो समटाइम्स इट जस्ट गोज अवेज लाइटली, बट प्रिकॉशन इज बेटर, यू नो। कितना भी आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, फ़ोन पे ध्यान रखिए, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था 6:35 और मैकआर्थर पे हैवी रेन्स हैव स्टार्टेड एंड लोगों को वाइपर्स ऑन करने पड़ गए हैं, ऐसा अपडेट आया था हमारे पास। सो यस, वी हैव टू स्टे सेफ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टेकिंग यू टूवर्ड्स वन मोर ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अभिनेत्री। इस गाने की फरमाइश की है सुधा जी ने।

जल्दी से एक और मजेदार और खूबसूरत 90s नंबर की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं, उदित नारायण की आवाज में ये गाना फिल्म यलगार से आप लोगों के लिए।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
3: कितनी लंबी लिस्ट है?
2: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
3: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
4: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
5: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
6: That garba was totally worth it. We had so much fun.
7: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
6: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
8: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
10: Omar Khwaja.
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस, कैंपेन का रिजल्ट?
15: योर ऑनर, हजारों लोगों ने एड देखा।
14: मिस क्लिक्स?
16: 100 लोगों ने क्लिक भी किया।
14: कस्टमर्स कितने आए?
17: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
16: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
18: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
19: Nation ka fun station, Fun Asia Radio.
20: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे और घड़ियों बज रहे हैं 2:04, दोपहर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो दोपहर शुरू हो गई है और शाम 4 बजे से फ्लड वॉच शुरू हो रहा है। बार बार बता रही हूँ, प्लीज स्टे सेफ, ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लो और आज बिल्कुल भी गाड़ी सेल्फ ड्राइव पे ना चलाएं, मतलब खुद ही ड्राइव करें तो बेटर रहेगा। एंड यस, अवॉइड the areas that are flooded और जहाँ पर heavy rains हैं, और अपने phone पे updates देखते रहिए। हो सकता है बहुत कुछ ना हो पर मौसम विभाग मतलब weather department की तरफ से warnings हैं, तो please don't take it lightly। And from the studio of Anisha we're playing some beautiful बारिश वाले numbers and I hope you're enjoying it। Please ये खूबसूरत गाने सुनिए, इनका आनंद लीजिए। कोई गाना है तो फरमाइश करिए। फिलहाल हम ये गाना play कर रहे हैं फिल्म चांदनी से।

0: मेरी
1: तो
0: जान।
1: ये था और बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म चांदनी से विनोद खन्ना और श्रीदेवी, सुरेश वाडकर और अनुपमा देश पांडे की आवाज। अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि PMJ ज्वेल्स इज नाउ इन फ्रिस्को ब्रिंगिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। एक्सप्लोर ब्यूटिफुल गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन। विजिट PMJ's ज्वेल्स ऑन मेन स्ट्रीट फ्रिस्को, jewelry that tells your story. And Dallas, the sparkle of New York Fashion Week is coming your way. Discover the chosen PMJ Jewels New York's Fashion Week 2026 collection at PMJ Dallas on October 3rd. Experience exquisite jewelry that brings runaway glamour to your world. To jaldi jaiye PMJ Jewels jo ki hai Main Street Frisco par. तो अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, बरसात फिल्म का ये गाना, बॉबी देओल एंड ट्विंकल खन्ना। और इस गाने की फरमाइश आई है राम की तरफ से।

Business owners and retailers, Ravi's 21st annual trade market brings you new products, vendors, exclusive deals, giveaways and big savings for your store. Join on October 29th, 30th, 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas. Register now at shopravis.com. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. So, jaldi se date save kar lijiye, October 29th, 30th and 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas. And taking you towards the next song, अरे मतलब ये गाना नहीं बजे बारिश के गानों में तो कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता है. फिलहाल इस गाने के बाद मेरे जाने का वक्त हो जाएगा और हमारी प्यारी किरण जी, सुनहरी किरण लेकर के आएंगी आफ्टरनून ड्राइव टाइम आप लोगों के लिए. पहले इस गाने को सुनते हैं और फिर आपसे लेंगे विदा. A beautiful track from the movie Namak Halal, Smita Patil aur Amitabh Bachchan ka Aaj Rapat Jaye, aap logon ke liye.

was a beautiful number and now वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का. बस थोड़ा ही समय बचा है. इस थोड़े समय में जितने हो सके उतने खूबसूरत गाने आपको सुनाएंगे और एंटरटेन करेंगे. बारिश के गाने चल रहे थे और मौसम बदलने वाला है, फ्लड वॉच है, तो प्लीज अपना ध्यान रखें. बार बार बोल रही हूँ बिकॉज वी नीड टू अवॉइड एनी मिस हैपनिंग ऑन द रोड. एंड इफ यू थिंक it's raining too hard, then please stop your car and wait on the sides. There are a lot of advisories by the Texas Weather Department. Please just go and read that and take care of yourself. Ek aur bahut hi pyara sa barish wala number jisme hai Rajesh Khanna aur Zeenat Aman, wo lekar ke aa rahi hai aapke host Ayushi.

0: ब्यूटीफुल ट्रैक राजेश खन्ना जीनत अमान, बहुत ही प्यारा सा गाना। अब ले रहे हैं हम आपसे विदा, 2:30 बजने वाले हैं, किरण जी आने वाले हैं, सुनहरी किरण आफ्टरनून ड्राइव टाइम लेकर के आएंगे आपके लिए। आयुषी आज के लिए विदा ले रही है आपसे, आपकी होस्ट, और हम मिलेंगे कल ठीक 12:30 बजे, 12:30 से 2:30 बजे तक आपको एंटरटेन करूंगी। फिलहाल इस बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। प्लीज एंजॉय द गुड वेदर। गर्मी के बाद इस वेदर में सबको मजा ही आने वाला है। बट दिस ब्यूटिफुल ट्रैक इज फ्रॉम मी टू यू ऑल गाइस, ऑल ऑफ यू।
1: लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं।
2: का नुकसान क्यों कर रहे हो? शूटिंग खत्म करो और मूव ऑन।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: भूख लगी
3: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
6: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
7: लैपटॉप में.
6: इन्वेस्टमेंट,
7: गूगल ड्राइव,
6: इंश्योरेंस, पासवर्ड्स?
7: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
6: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
5: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
8: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
5: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
9: Elwing walo, dhyan se suno. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 3rd October.
10: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
11: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
12: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
13: Guidance ki baat ho to ek hi naam hai, Pandit Ram Tulsi. जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 4697343338. 4697343338. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
16: बिंदास बोलो. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
17: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर.

जी हाँ, वैसे आप ही की रिक्वेस्ट पे ये गाना प्ले कर रही थी. कुछ रिकमेंडेशंस आपकी जरूर लेती हूँ, ऑल्दो दिस इज अ डिजाइंड प्रोग्राम जो मैं आपके लिए डिजाइन करके लाती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी पसंद है तो जरूर रिकमेंडेशंस आप मुझे दे सकते हैं. वैसे अभी मेरे से पहले आयुषी यहाँ मौजूद थी, बहुत सारे प्यारे प्यारे बारिश से रिलेटेड गाने उन्होंने प्ले किए हैं. दो तीन दिन अगली हमने बारिश की फोकास्ट है, सो अभी तक तो कुछ बरसता हुआ नजर नहीं आया मुझे, लेकिन मौसम बहुत ही शानदार, बड़ा ही खूबसूरत है. तो जी, मैं आपके साथ इस शानदार मौसम में आज 5 बजे तक नहीं बल्कि 6:30 बजे तक मौजूद हूँ. सो वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, लॉट ऑफ ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट. बने रहिए मेरे साथ.

जी हाँ, और मौसम कुछ बारिश का मौसम जब आता है और कुछ इस तरह का मज़ा खूबसूरत तो होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल. और साथ ही आपको ये बताऊं, अगर अनफॉर्चुनेटली आप या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि किसी कार एक्सीडेंट या ट्रक इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो फिर एक अटर्नी आपको अपनी साइड पे चाहिए जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पेपर वर्क हैंडल करे, लीगैलिटीज के साथ डील करे, ऑल द निटी-ग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन लेट दैट अटर्नी हैंडल फॉर यू व्हाइल यू टेक care of your well-being. And that attorney is attorney Umar Khwaja. Na sirf ye ki wo aapke liye ye case file karenge, balki aapko best compensation dilayenge jo aap deserve karte hain. The best part is ki you don't have to pay anything until you win the case. So win-win situation hai is mushkil ghadi mein aapke liye ya someone you care for. Give them Umar Khwaja's number for that call and get that consultation. 469-300-5046. 469-300-5046 unka number, ya phir attorney attorneyumar.com is where you need to log on. Umar is OMAR. attorneyumar.com. Shahina, aapke phone call ka bahut bahut shukriya. Shahina is waqt travel kar rahi hain Mansfield se. She is going to Colliwell. And yahan jaise hum Mikini mein hain, abhi to barish Mikini mein shuru nahi hui thi while I was coming from Koppel. Lekin Mansfield se Colliwell ke raste mein hai बहुत ज़्यादा बारिश, और दैट इज़ व्हाट आप लोग मुझे फ़ोन करके अपनी अपडेट्स दे रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर द करंट लेटेस्ट अपडेट्स जो कि ग्राउंड में चल रही हैं. वो कहते हैं ना, यू आर माई फील्ड वर्कर्स, यू आर टेलिंग मी. थैंक यू सो मच आप लोग की फ़ोन कॉल्स का. सो शाहीना, आपके लिए ये खास गाना, एन्जॉय.

कुछ आपकी रिकमेंडेशंस रोमांटिक मेलोडीज में फिट इन करने की कोशिश कर रही हैं. थैंक यू सो मच अली आपकी फोन कॉल का. फोर्ट वर्थ में हो रही है बहुत तेज बारिश और आप सब अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं निकले हुए हैं, तो प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाइए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, अगला गाना एक बहुत ही खूबसूरत प्ले कर रहे हैं. कृष्णा ने ये गाना रिकमेंड किया और दिस इज गोइंग आउट टू कृष्णा एज वेल एज सफी. सफी एंड कृष्णा जी, दिस इज गोइंग आउट टू यू.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
6: कौन सा?
5: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
6: अरे सारे तो सेम है।
5: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
6: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Subha Drive Pe.
7: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
8: Dopahar phone par.
9: I don't listen to Spotify, I listen to Funny Share Radio.
4: Shaam ko ghar par.
0: You are listening to Fun Asia Radio.
4: Your customers are everywhere. तो आपका business सिर्फ एक जगह advertise क्यों हो?
8: Fun Asia Network के साथ customers तक पहुँचे radio से digital तक, and with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings or visits. A 360 degree advertising solution for your business, so customers can hear about you, see you and connect with you.
4: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
8: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
10: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
11: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
10: Fikar not. We have the perfect solution.
12: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं।
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं।
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं।
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
15: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
17: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner. Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa,
12: perm labor certification or citizenships. They do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
18: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 AM टू 8 PM मुंबई बैंगलोर पुणे चेन्नई हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट्स फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट
19: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM

Afternoon Drive Time सुन रहे हैं आप विद सुनहरी किरण राइट हियर ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन 104.9 एफएम. और जी अब वक्त आ चला है आपके साथ पॉप फ्रीक्वेंसी प्ले करने का, यानी कि अगले एक घंटे प्ले करूंगी आपके लिए कुछ लवली पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक, कुछ ड्रामों के गाने, कुछ फिल्मों के गाने, और साथ ही साथ 3:30 से 4 बजे तक लेकर आऊंगी आपके लिए द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स फॉर लास्ट वीक. सो बने रहिए मेरे साथ. ये वो ड्रामे हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने. कुछ नए ड्रामे ऐड हुए हैं और खास तौर पे एक स्पेशल ड्रामे का आपके साथ तस्करा करूंगी जो अब तक इस लिस्ट में ऐड नहीं हुआ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत दिन अभी अभी शुरू हुआ है इसलिए ऐड नहीं हुआ, लेकिन आपकी लिस्ट में उसे ऐड हो जाना चाहिए. सो दिस इज पॉप फ्रीक्वेंसी. स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय.

सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गाना. और आगे बढ़ रहे हैं जी, आगे बढ़ते हुए लेकर आई हूँ आपके लिए बरिस्ता हाउस की तरफ से एक गिव अवे. जी हाँ, दिस बरिस्ता हाउस इज वेरी फेमस इन डेंटन और अब दे आर ओपन फॉर योर डाइनिंग प्लेजर इन फ्रिस्को. ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. यहाँ आपको मिलेगा ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स आपके, और साथ ही साथ डिलिशियस डिजर्ट्स और भी बहुत कुछ. तो आइए फ्रेंड्स के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, एंजॉय कीजिए बरिस्ता हाउस को लोकेटेड इन फ्रिस्को. और अगर आप वहां जाइएगा तो आपको एड्रेस पता होना जरूरी है और यही है आपसे अगला सवाल. जीत सकते हैं आप $20 का ये गिफ्ट कूपन फॉर डाइन इन ओनली अगर आप मुझे कॉल करके बताएंगे बरिस्ता हाउस लोकेटेड इन फ्रिस्को का सही स्ट्रीट एड्रेस. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. यू ट्यून्ड इनटू पॉप फ्रीक्वेंसी राइट हियर ऑन सुनहरी किरण.

नाजिया और जोहेब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गाना, और साथ ही साथ आपसे सवाल किया था जी कि बरिस्ता हाउस जो कि फ्रिस्को में नया खुला है आपके डाइनिंग प्लेजर के लिए, उसका एड्रेस बताइए, क्योंकि आपने जाना है तो एड्रेस तो मालूम होना ही चाहिए. 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सास, दैट इज द एड्रेस ऑफ बरिस्ता हाउस. $20 का ये गिफ्ट कूपन आपके लिए आया था फॉर डाइन इन ओनली. आप तमाम लोगों की फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. एज यू ऑल नो, जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं वो सीक्वेंस को एक नंबर असाइन होता है, मैथ के फॉर्मूले में डलता है, और आपकी लक आपकी विन का फैसला करती है. और आज के हमारे लकी विनर हैं आशीष पद्मा. आशीष कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर बरिस्ता हाउस पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो एंड अवेल योर गिव अवे. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. मेरे लिए तो मैं तो विनर नहीं रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं, आप सब मेरे लिए विनर हैं, लेकिन आप सब की फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. आप सुन रहे हैं पॉप फ्रीक्वेंसी.

जी हाँ, और अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है जी, जैसे कि कोई वेडिंग इवेंट आ रहा है, हाउस वार्मिंग है आपकी, कोई स्पेशल सेलिब्रेशन है, ग्रेजुएशन तो वैसे आजकल खत्म हो गई है, बट इवन इफ देयर इज अ ग्रेजुएशन, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर समथिंग बिग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. और अगर आप उसके लिए कुछ लोगों को बुलाना चाहते हैं, कोई बहुत जबरदस्त फंक्शन करना चाहते हैं, तो आई नो दैट स्ट्रेस कम्स विद इट. यानी कि डिकोर क्या होगा, केटरिंग कहाँ से होगी, अरेंजमेंट कैसे होगी, लोग कैसे आएंगे, सब कुछ, यू नो देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी थिंक ऑफ व्हेन वी आर थ्रोइंग अ बिग पार्टी. तो आपको क्या करना है, ये टेंशन नहीं लेनी. आप अपनी सारी टेंशन दे दीजिए विनेसा इवेंट्स को, बिकॉज विनेसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर फॉर यू. Venues, decor by signature events, photography, hospitality or catering exclusively by Basera Grand. तो आपको मैं नंबर देती हूँ जिस नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है Vanessa Events को. ये एक नंबर है हरी बसेरा साहब का. द नंबर इज 4694428770. 4694428770 उनका नंबर. Vanessa Events, make them your celebration partner and you make those beautiful memories while Vanessa Events take care of the rest.

जी हाँ, और इस अगली कहानी के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर वी विल एंटर आवर मोस्ट फेवरेट सेगमेंट, द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. बने रहिए मेरे साथ. मेरे पास आपके लिए है बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर. वैसे मैं आपके साथ आज मौजूद हूँ शाम 6:30 बजे तक.

आप सुन रहे हैं 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran में वक्त हो चला है जी आपके लिए लेकर आई हूँ पॉप फ्रीक्वेंसी में द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑन द टीआरपी चार्ट्स और फॉर द वीक ऑफ सितंबर 21st टिल सितंबर 27th कौन से ड्रामे रहे इस बार चार्ट्स में टॉप 10 में कौन से ड्रामे आपको और मुझे देखने चाहिए ऐड करने चाहिए अपनी लिस्ट में सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी स्टार्टिंग विद ड्रामा नंबर 10 जो कि टीआरपी 6.7 टीआरपी के साथ पिछले हफ्ते ट्रेंड किया एंड दैट ड्रामा इज कैसा ये इश्क ये है जी एक वीकडे रिलीज जो कि आता है मंडे टू सैटरडे 9 PM रात को मैं देख रही हूँ कि जो हमारे सोप ऑपरस काइंड ऑफ ड्रामा है जो कि 5 दिन या 6 दिन आते हैं वो भी अब हमारी इस टॉप 10 की लिस्ट में काफी फ्रीक्वेंटली शामिल होने लगे हैं सो दिस ड्रामा कम्स ऑन हरपल जियो यानी कि जियो एंटरटेनमेंट इसमें नजर आ रहे हैं हमें उस्मान पीरजादा जोहा तौकीर हशाम खान और साथ ही साथ साइमा हुसैन सलमा हसन और जो स्टोरी है वो रिवॉल्व्स अराउंड द मेन लीड सिला और अली उनका नाम है चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से ये हुज अरेंज्ड एंगेजमेंट इज अब्रप्टली ब्रोकन ऑफ बाय सिलाज स्ट्रिक्ट एंड ओवरबेयरिंग ग्रैंडफादर और वो ग्रैंडफादर का रोल किया है जी उस्मान पीरजादा ने जबकि सिला हैं जोहा तौकीर और अली हैं हशाम खान और फिर क्या होता है किस तरह से वो फैमिलीज में झगड़े हो जाते हैं और अब क्या होगा आगे यही है कहानी कैसा ये इश्क की और इसी के साथ नंबर 9 पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है दैट इज हे फैम ये एक जेंजी फोकस्ड ड्रामा है हे फैम इसका नाम है हे फैम लाइक एन इज इन फैमिली से फैम और ट्रेंडिंग टेलीविजन टॉपिक बन चुका है ये हेयर आर ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस के जी ARY डिजिटल पे आता है वेंसडेज और थर्सडेज को शाम 8 बजे और इसमें हमें नजर आ रही हैं दुआ जहरा जिन्होंने सीरत अंसारी का किरदार अदा किया है जावियार नुमान नुमान एजाज के बेटे फैजान मुस्तकीम का इन्होंने किरदार अदा किया है और भी अच्छी जबरदस्त कास्ट है जैसे कि फैसल कुरैशी हैं नादिया अफगन हैं नुमान मसूद हैं मतलब पावरफुल पावर पैक्ड कास्ट है इसके अंदर प्लॉट जो है वो एक मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कल्चर और वायरल फेम को डिपिक्ट करता है जो कि आजकल सभी लोगों की बहुत सारी जिंदगियों में ये सब होता है सो किस तरह बन जाए आती है वायरल सेंसेशन एक मिडिल क्लास लड़की और फिर डार्क साइड ऑफ जर्नलिज्म क्या है इन चीजों को टच किया गया है इस ड्रामे में ऑडियंस आर एब्सोल्युटली लविंग दिस रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्रॉम रेगुलर टॉपिक्स जैसे कि सास बहू का ड्रामा और फैमिली पॉलिटिक्स और फैमिली ये और फैमिली वो उससे जरा हटके ड्रामा है होलसम फैमिली डायनामिक्स दिखाई गई है सो पीपल आर एक्चुअली लविंग इट TRPs रही इसकी लास्ट वीक 7.5 नंबर 8 पे जो ड्रामा रहा वो है जी ड्रामा सीरियल इज्जत अच्छा ये जो इज्जत ड्रामा है ये भी अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ अभी अभी शुरू हुआ है ARY डिजिटल पे आ रहा है और दिस इज ऑन मंडेज थ्रू संडे एक बार फिर दिस इज अ डेली सोप 7 बजे शाम को आता है मीरा वली इसमें नजर आ रही हैं साथ अतबिक मोहसिन नजर आ रहे हैं और हशाम खान प्लॉट जो है वो मीरब और अतबिक यानी कि जो मेल लीड्स हैं रुबा और रेयान उनका नाम है उनके दरमियान है जो कि जिनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है इंस्टेंटली ड्यू टू सडन डोमेस्टिक स्ट्राइफ और जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं डोमेस्टिक अपनी लाइफ में उसके थ्रू और फिर क्या होता है जब जिंदगी चेंज होती है तो कौन कौन से नए कैरेक्टर्स उस जिंदगी में आते हैं और डिसीजन मेकिंग कितनी टफ हो जाती है दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट पीपल आर लविंग दिस थिंग बिकॉज इट्स फास्ट पेस अब तक स्लो नहीं हुआ हाई स्टेक फैमिली ड्रामा है व्यूअर्स जो हैं वो कहते हैं कि इट्स रिलेटेबल इट इज़ इंटेंस जो ब्रेक डाउन है लोगों का और उनके ट्रस्ट का जो टूटना है वो आम जिंदगी में लोग उसको एनालाइज करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज़ वाई people can feel the relatability with the drama. These were the top 10, 9 and 8 ke dramas. Jab hum is gaane se wapas aayenge, to I will tell you 7, 6 and 5.

जी हाँ, आ गए हैं हम अपनी लिस्ट पे बैक और सातवें नंबर पे. पिछले हफ्ते जिस ड्रामे ने ट्रेंड किया वो है जी आपकी इज्जत. मेरा ख्याल नहीं था, वैसे स्टोरी जिस तरह जा रही थी ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है. तो अपेरेंटली ये छोटा सा ड्रामा था, अराउंड मेरा ख्याल है 22 किस्तों में ही कंक्लूड हो जाने वाला. तो बस कंक्लूजन की तरफ जा चुका है और जा ही मतलब हमें दिख गया है, द हैप्पी एंडिंग हमें मिल गई है. बट द बेस्ट पार्ट इज दैट हमने इस ड्रामे को या बहुत ज्यादा एंजॉय. अगर आपने आपकी इज्जत नहीं देखा तो बस फॉर द शीयर प्लेजर ऑफ स्टोरी देख लीजिए. जिस तरह से स्टोरी को दिखाया गया है, जिस तरह से उमेरा अहमद ने उस डायलॉग्स को लिखा है, जो कि खास तौर पे जो मियां बीवी के दरमियान जो डायलॉग्स हुए हैं, दैट इज अ वेरी यू नो इंटरेस्टिंग वॉच. आपकी इज्जत जो कि आ रहा था हम टीवी पे फ्राइडेज एंड सैटरडेज 8 PM और जो है जी इसमें हमें एहसन खान नजर आए ताबिश के रोल में, जबकि बीना ने उर्वा हुसैन ने बीना का रोल किया और बहुत ही शानदार रोल किया. आप लोगों को क्यों पसंद आ रहा है ड्रामा ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, जरूर चेकआउट कीजिए. इफ यू हैव मिस्ड इट, दिस इज नॉट द वन दैट यू रियली वांट टू मिस. अच्छा जी, सातवें नंबर से अब हम आ रहे हैं छठे नंबर पे. छठे नंबर पे ड्रामा है तपिश, जो कि यू नो दिस पाकिस्तानी ड्रामा कंक्लूडेड इट्स हाई टॉक्ड अबाउट टेलीविजन रन इन सितंबर, तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. हेयर आर द डिटेल्स के जी जियो एंटरटेनमेंट पे आता था मंडेज और ट्यूजडेज को 8 बजे और मुनीब बट और लाइबा खान हमें इसमें नजर आई. ऑडियंसिस ने बहुत पसंद किया इस ड्रामे को, डिस्पाइट क्रिटिक्स जो हैं वो कॉल आउट कर रहे थे कि ये क्या ऑब्सेसिव साइको बिहेवियर है जो है. लेकिन अब क्या करें जी, जब जो चीज़ ऑडियंस को पसंद आ जाए वो ट्रेंड करती है. सो तपिश बिकेम अ स्लीपर हिट उसको कहा जा रहा है. चंद एक फैक्टर्स जो उसके पसंद आने के की वजह बने वो थे कंपेलिंग लीड परफॉर्मेंसेज, लोगों को मीरा बट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, हाई प्रोडक्शन वैल्यू थी उसके अंदर और एक काइंड ऑफ आप कह लीजिए कह रहे हैं गिल्टी प्लेजर एंटरटेनमेंट था, फास्ट पेस था, हाईली ड्रामेटिक था और एग्जैजरेटेड टर्न्स एंड ट्विस्ट जो हैं वो ऑडियंसेस को जगाए रखते थे उस ड्रामे को लेके. सो दिस वाज नंबर 6 और नंबर 5 पे जो है एक नया ड्रामा हमारे चार्ट्स पे आया है एंड दैट इज मोहब्बत मुख्तसर. हम टीवी पे आता है संडेज को, इट्स ओनली वन डे अ वीक, 8 बजे शाम एवरी संडे और इसमें हमें नजर आ रहे हैं उसामा खान और सैयदा मदीहा इमाम. सो मदीहा इमाम और उसामा खान इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं. नूरा मखदूम ने इस ड्रामे को लिखा है और जी इट रिवॉल्व्स अराउंड टू इंडिविजुअल्स जिनका टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से वो बिलोंग करते हैं और रोमांटिक ड्रामा है जो कि हैवीली ड्रिवन है बाई थीम्स ऑफ डीप रूटेड सीक्रेट्स, हैवी इमोशनल बैगेज और साथ ही साथ इंटेंस सैक्रीफाइसेस. पीपल आर लविंग दिस फ्रेश ऑन स्क्रीन पेयरिंग और लोगों को देख के मजा आ रहा है. तो ये हुआ आपके लिए 5, 6 और 7. अब जब हम वापस आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट 4, 3, 2 एंड 1.

और इसी के साथ आ गए हैं हम ड्रामा नंबर 4 ऑन टीआरपी चार्ट्स दैट ट्रेंडेड लास्ट वीक एट 8.9 टीआरपीज एंड दैट इज मैं तेरा. ये है जी एक डेली सोप काइंड ऑफ थिंग. एक्चुअली आता है, मैं आपको बताऊं कौन से चैनल पे. दिस कम्स ऑन ARY डिजिटल मंडे थ्रू फ्राइडे रात को 9 बजे आता है. अरीज अहमद हसन का रोल प्ले कर रहे हैं, युसरा इरफान है, कश्माला का गाना अली, ताबिंदा का रोल प्ले कर रही हैं. और स्टोरी जो है वो मतलब आप क्या बताइए, एक डीपली डिवोटेड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मिडिल एज्ड शख्स हैं जो कि जिन्होंने अपनी इंटायर जिंदगी जो है वो अपनी फैमिली, अपनी मदर, अपनी सिस्टर्स, चार बहनों को प्रोवाइड करने में निकाली. और बिकॉज ऑफ हिज मदर्स बिलीव्स यू नो ही मस्ट दैट ही मस्ट फुली सेटल ऑल ऑफ हिज सिस्टर्स बिफोर ही कुड गेट मैरिड. तो वो सारा सिचुएशन हमने देखा और फिर बहन भाई के रिलेशनशिप बड़े अच्छे तरीके से दिखाए जा रहे हैं. ऑल्दो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मेरे लिए मैं तेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है देखना, स्पेशली द टॉक्सिसिटी जो वो जो एक बहन के हस्बैंड की है उसमें वो बहुत ज़्यादा टू मच हो जाती है. लेकिन टू ईच देयर ओन, इट इज़ ट्रेंडिंग, पीपल आर एब्सोल्युटली लविंग द ड्रामा एंड इट हैज़ बिन ऑन द टॉप 5 TRP's चार्ट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, दिस इज मैं तेरा फॉर यू. और नंबर 3 पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है ये अभी अभी आया है और बस आते ही इसने अपनी जगह बना ली है. जंजीरें खत्म हुआ ड्रामा तो जंजीरें की जगह पे ये ड्रामा शुरू हुआ. दिस इज गुल बहार, वेंसडेज एंड थर्सडेज 8 PM ऑन हम टीवी. सनम सईद इसमें नजर आ रही हैं, इमाद इरफानी के साथ उनकी जोड़ी बनी है और साथ ही साथ कोमल मीर ने दिया का रोल प्ले किया है. इट इज अच्छा, सपोर्टिंग कास्ट भी इस ड्रामे की काफी अच्छी है. और एक बार फिर आपको बताऊं कि दिस ड्रामा इज डायरेक्टेड बाय महरीन जब्बार. सो द स्टोरी इज, अगर आपको याद हो कि सनम सईद और ये जो हैं इमाद इरफानी, ये हमें कफील में नजर आए थे. आप सबने कफील को बहुत पसंद किया, बहुत हाई TRPs थी कफील की, जो कि उमेरा अहमद का लिखा हुआ ड्रामा था. सो अभी इस ड्रामे को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. स्टोरी इज काइंड ऑफ यू नो टिपिकल सी के एक बहुत ही हैप्पी और लवी डवी कपल है जिनका बेबी नहीं हो रहा और उसके बाद वो क्या होता है और अगली बंदी यू नो एक ट्राइंगल बन जाता है, फिर कैसे चलता है ये सारी कहानी आप देखिए. आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन फॉर यू. सो जब आप देखेंगे तो उसको डेफिनेटली इंजॉय करेंगे. सो दिस इज गुलबहार ट्रेंडिंग ऑन नंबर थ्री. अब इस गाने से वापस आकर मैं आपको बताऊंगी कि पहले और दूसरे नंबर पर कौन से ड्रामे रहे.

नंबर टू पे ट्रेंड किया जिस ड्रामे ने विद 13.1 टीआरपी स्टैगरिंग डिफरेंस फ्रॉम गुलबहार जो कि तीसरे नंबर पे था. गुलबहार ट्रेंड किया 9.2 टीआरपी के साथ जबकि दरे निजात ट्रेंडेड विद 13.1 टीआरपी. फ्राइडे और सैटरडे को ये ड्रामा हमें 8 बजे देखने को मिलता है ERY डिजिटल पे. मतलब वीकेंड का वैसे ही इंतजार रहता है लेकिन अब इस ड्रामे की वजह से और ज्यादा इंतजार रहने लगा है. और जी शहरयार मुनव्वर एज अबू बकर, अब तो मेरा ख्याल है अबू बकर का जो नाम है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया जहां जहां हम देसी लोग ड्रामा देखने वाले हैं. दुर्रफिशा सलीम एज दरियाब एंड नमीर नवाज खान एज जामिल, इन तीनों ने अपना इतना इम्पैक्ट छोड़ दिया है कि हर बंदे को अब ये नाम याद हो गए हैं. अबू बकर, जरियाब एंड जामिल, क्या कहानी चल रही है, बड़ी जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं. जामिल साहब किसी तरह जान नहीं छोड़ रहे जरियाब की, जरियाब को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है और अबू बकर साहब इतने अच्छे हैं कि यकीन ही नहीं आता कि ऐसा इंसान दुनिया में एग्जिस्ट भी कर सकता है. बट जिस तरह से ये सारा कुछ दिखाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है. अगर आपने दरे निजात देखना शुरू नहीं किया तो आई थिंक इट इज एन अमेजिंग वॉच.

करना गया है, और अबू बकर साहब इतने अच्छे हैं कि यकीन ही नहीं आता कि ऐसा इंसान दुनिया में एग्जिस्ट भी कर सकता है। बट जिस तरह से ये सारा कुछ दिखाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपने दर निजात देखना शुरू नहीं किया तो आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग वॉच फॉर एनी नथिंग एल्स, तो इसलिए कि स्पेशली यू नो बच्चों को, चूँकि वो नए यंग जनरेशन को केटर कर रहा है, ये सारे लोग आज की जनरेशन के दिखाए गए हैं जेन ज़ी के, तो किस तरह से सोशल मीडिया और पिक्चर्स और वो जो हम ले लेते हैं तस्वीरें और बाद में वो हमारे हमें हॉन्ट करने के लिए आती हैं, ये भी एक बड़ा सॉलिड मैसेज, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस जो दे रही हैं उमेरा अहमद इस ड्रामे में। और उसी के साथ नंबर वन पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इज बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो अब चल रहा है आजकल जी मंडेज एंड ट्यूजडेज 8 बजे शाम को आता है ARY डिजिटल पे। लास्ट वीक इसकी हमने सेकंड लास्ट एपिसोड देखी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बस एक आखिरी एपिसोड इसकी रहेगी जो कि ऑफकोर्स अब ये और क्या होना था इस ड्रामे में, 45-47 एपिसोड्स हो गए हैं, बस कर दीजिए। तो मंडेज और ट्यूजडेज 8 बजे सना जावेद और फरहान सईद का ये ड्रामा बहुत ज्यादा हिट हुआ, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया, दो आई फाउंड इट अ लिटिल टू स्लो बिकॉज आई थॉट ये ड्रामा आराम से 30 एपिसोड्स में रैपअप किया जा सकता था, बट खींच के बट The drama is still brilliant. Go and watch Bas Tera Saath Ho. और before this के मैं इस segment को wrap up करूँ, मैं आपको एक और drama के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि अभी शुरू हुआ है। TRP charts पे हमारे वो drama add नहीं हुआ है अब तक, लेकिन मेरी list पे वो drama add हो चुका है। I'm sure आपकी list पे भी हो गया होगा। This is Mitti De Baave. September 23rd से इस drama ने air होना शुरू किया है on देखिए ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल पे। इट्स नॉट ऑन जियो, इट्स नॉट ऑन ARY, इट्स ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट। ग्रीन एंटरटेनमेंट बड़े शानदार ड्रामे बनाता है और बड़ी यू नो बड़ी उसकी जबरदस्त कहानी भी होती है और उसका जो टेक होता है बड़ा कमाल का होता है। सो वेंसडेज और थर्सडेज को इसकी दो एपिसोड्स आ चुकी हैं ड्रामे की, 23 सितंबर से शुरू हुआ है और जी 8 बजे आज इसकी तीसरी एपिसोड आनी है। दिस इज माहिरा खान जिन्होंने बिल्कीस बानो यानी कि बिल्लो का रोल अदा किया है और साथ ही साथ वहाज अली। अब वहाज और माहिरा का ड्रामा हो और ना देखा जाए ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। ज़रूर चेकआउट कीजिए मिट्टी दे बावे, जो दो एपिसोड्स मैंने देखी हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट ओनली अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अमेजिंग एक्टिंग, ब्रिलियंट डायरेक्शन, अमेजिंग साउंड, मतलब हर चीज़ जो एक ड्रामे की मेकिंग में जाती है आप हर कैटेगरी में उसे अमेजिंग का चेक मार्क दे सकते हैं। मिट्टी दे बावे के इस ऑफिशियल साउंड ट्रैक के साथ वी आर गोना एंड दिस सेगमेंट। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो आई विल प्ले फॉर यू सम ट्रॉफी ट्रैक्स।

जी हाँ, और अगर आप क्रेव कर रहे हैं जी जबरदस्त मुंबई और लखनऊ के फ्लेवर्स, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ जाना है। आपको जाना है पेज 383 पे। दे आर लोकेटेड एट हब 121 इन मिकिनी। फ्रॉम टैंगी फ्लेवरफुल चाट्स टू जूसी कबाब, स्मोकी तंदूर स्पेशलिटीज, एरोमेटिक बिरयानीज और रिफ्रेशिंग हैंड क्राफ्टेड ड्रिंक्स के लिए Page 3 E3 is the place for you. They bring the vibrant taste of India straight to your plate. और इतना खूबसूरत वो plate दिखती है कि पहले दिल करता है उसकी थोड़ी सी pictures ले ली जाएं before we start eating. They're amazing at presenting them. So it is perfect for dinner date, for a night out with friends, and just simply because you just are craving desi food. So Mikini में आप जा सकते हैं. They are located at Hub 121 in Mikini. या फिर आप उनका menu जरूर explore कीजिए by checking out Page 3 eatery.com. That is page 3 as in number 3, eatery.com. This is where you'll find big flavors. Bold cravings are satisfied right here. This is your one delicious destination.

सुन रहे थे आप दिल से, ये गाना फिल्म से. और अब जी आगे बढ़ते हुए लेकर आई हूँ आपके लिए डक टाइम की तरफ से एक गिव अवे. यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग 50% डिस्काउंट ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग फ्रॉम डक टाइम. डक टाइम की एक साल की एनिवर्सरी पूरी हो चुकी है एंड दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. दे हैव ब्रिलियंट रिव्यूज, दे डू अ गुड जॉब विद योर डक्ट क्लीनिंग. सो सबसे पहले तो आपको डक्ट क्यों साफ कराना चाहिए, इसमें तो कोई मतलब साइंस है नहीं. एवरीबडी नोज डस्ट रिमूव होती है, आपके वेंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, एयर फ्लो इंप्रूव होता है, स्पेशली जो हिडन फायर हैजर्ड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. सो डक टाइम को कॉन्टैक्ट कीजिए इफ यू वॉन्ट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट. दैट नंबर इज फॉर जीतू पटेल जी. दैट नंबर इज 9728772500. जीतू पटेल साहब ऑफ डक टाइम, इन्हें कॉल कीजिए 9728772500 और अपनी अपॉइंटमेंट आज ही बुक कराइए. और अब अगर आपने ये 50% डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग, जो कि मुझे लगता है कि घर का सबसे ज्यादा डस्टी और गंदा वेंट होता है क्योंकि इतने सारे कपड़े ड्राई होते हैं, तो आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस गिव अवे में. मैं अब जो गाना आपके लिए, चूंकि ट्रॉफी ट्रैक्स चल रहा है, आप जानते हैं कि ट्रॉफी ट्रैक्स में मैं ऐसे गाने प्ले करती हूँ जिन गानों को या जिनकी फिल्मों को कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिला है या वो नॉमिनेट हुई हैं अवार्ड्स के लिए, और स्पेशली कोशिश होती है फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए जो फिल्में नॉमिनेट हुई हैं. तो ये जो गाना अब आप प्ले सुनेंगे ये है जी फिल्म दिल धड़कने दो से. आपको मुझे ये बताना है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि फिल्म फेयर में दिल धड़कने दो 4 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई. आप मुझे ये बताइए कि उन 4 में से कौन सा अवार्ड इस फिल्म ने जीता. आपको मुझे ये बताना है कि इस फिल्म के एक एक्टर ने वो अवार्ड जीता था, ये भी आपको बता देते हैं. सो वो कौन सा अवार्ड था जिसके लिए द फिल्म गॉट अ विन. द रेस्ट ऑफ द 3 वर जस्ट नॉमिनेशंस. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. मूवी का नाम दिल धड़कने दो.

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ, वैसे 5 बजे तक रहती हूं. मार्विन आते हैं आपके लिए 5 से 7, लेकिन आज ही इज नॉट इन द स्टूडियो, सो आई एम हियर विद यू टिल 6:30 PM. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट विद फाइनेंशियल रेडियो. और आप जो है वो आई एम श्योर बहुत सारी मुझे कॉल्स आ रही हैं. मैं आपके साथ 2:30 बजे से मौजूद हूं और आप लोग मुझे एक्टिव लाइव अपडेट्स दे रहे हैं कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं या जा रही हूं और यहां बारिश हो रही है और यहां नहीं हो रही. जैसे कि प्लेनों की अभी मुझे अपडेट आई थी कि प्लेनों में बड़ी जोरदार बारिश हो रही है. समबडी वाज गोइंग फ्रॉम समवेयर टू कॉलीविल और वहां की मुझे अपडेट आई कि बड़ी तेज बारिश हो रही है. सो प्लीज ध्यान से ड्राइव कीजिए, ट्रैफिक का ख्याल रखिए. इस तरह की बारिश में मौसम तो सुहाना होता है लेकिन उसके साथ कुछ वो कहते हैं ना, विद प्रिविलेजेस कम्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो कुछ ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू सेफली ड्राइव एंड रीच वेयर एवर यू आर ट्राइंग टू रीच. दिस इज योर ड्राइव टाइम. ये है, मैं हूं सुनहरी किरण आपके साथ. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. और जी, अब लेके आई हूं आपके लिए एक गिव अवे. तो हम मतलब मौसम इतना खूबसूरत है तो चलिए फिर एक गिव अवे से ही शुरुआत करते हैं. और गिव अवे है SFL वर्ल्ड वाइड की तरफ से. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि SFL वर्ल्ड वाइड के बारे में कुछ. फेस्टिवल सीजन कॉल्स फॉर देसी आउटफिट्स. मिठाई जैसे कि नमकीन और सारे आपके जो फेवरेट गुडीज होते हैं वो, तो ब्रिंग देम होम विद SFL वर्ल्ड वाइड विद डोर स्टेप पिकअप एंड डिलीवरी. उसी के साथ ओशन शिपिंग फॉर लार्जर आइटम्स जैसे कि पूजा मंदिर या फिर झूलाज या फिर फर्नीचर. मतलब आपने छोटी चीज़ मंगवानी हो, आपने बड़ी चीज़ मंगवानी हो, आपने पूरे पूजा का एक सेटअप मंगवाना हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है SFL वर्ल्ड वाइड आपके लिए उसको पूरा करेगा. फॉर शिपिंग एंड मूविंग विद इन द US फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड एनी वेयर इन द वर्ल्ड. आपने कहीं और ट्रांसफर कराना है तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप SFLWorldwide.com पे. कॉल भी कर सकते हैं उन्हें फॉर ऑल योर क्वेश्चंस एंड दैट इज 1-800-691-2335. 1-800-691-2335 is the number. SFL Worldwide, bringing festivities closer to home. So, एक बार फिर सोच लीजिए, लिस्ट बना लें आपको अपनी नेक्स्ट पूजा के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए या वैसे घर का कोई सामान, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अच्छा, गिव अवे जो आया है SFL Worldwide की तरफ से वो एक अमेजिंग रास गरबा का गिव अवे है. रास गरबा विद खेलैया ग्रुप. जी हाँ जी, रास गरबा 2026 नाइट ऑफ म्यूजिक डांस एंड गुजराती स्पिरिट आपके लिए आ रही है DFW में अक्टूबर 10th को. फीचरिंग पीयूष शाह, रूपल दोषी शाह एज वेल एज शिमोन शाह. और ये वंस अगेन इट इज हैपनिंग ऑन सैटरडे अक्टूबर द 10th और ये हो रहा है जी फ्रिस्को फ्लायर सेंटर फ्रिस्को टेक्सस में, होस्टेड बाय DFW गुजरात समाज. और क्या बेहतर हो कि SFL वर्ल्डवाइड आपको एक फ्री टिकट दे इस इवेंट का. जी हाँ, अब फ्री टिकट लेने के लिए आपको क्या करना है मुझे बताना है, क्योंकि रास गरबा का इवेंट है. मुझे बताना है आपने कि बॉलीवुड की फिल्म का कौन सा ऐसा गाना है जो आपको रास गरबा के लिए बेस्ट लगता है. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन. Available.
6: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
7: Helpline, how may I help you?
8: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
7: Fikar not, we have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
12: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
13: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
12: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
13: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
11: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
14: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gro Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gro Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.

104.9 FM Funny Share Radio, अपना favorite radio station सुन रहे हैं आप. मैं हूँ किरण आपके साथ. This is extended drive time of with सुनहरी किरण. अच्छा जी, मैं 6:30 बजे तक आपके साथ मौजूद हूँ और SFL Worldwide आपके लिए लेकर आया था ये रास गरबा का एक टिकट जो कि हो रहा है Saturday October the 10th को Frisco Flyers Center में, brought to you by DFW Gujarati Samaj. So जरूर check out कीजिए. If you are interested, do become a part of this fun and lovely इवेंट. और जो गिव अवे आप सबने अपने अपने फेवरेट गाने मुझे बताए गरबा के, और जो गाना जिसने बाजी मारी है नंबर वन पे जो आया है, जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने रेकमेंड किया है, वो है हम दिल दे चुके सनम का ढोली तारों. वही गाना मैं प्ले करूंगी, लेकिन उससे पहले विनर अनाउंस कर दूं. जिस सीक्वेंस में आप मुझे कॉल करते हैं उसी सीक्वेंस को मैथ के फॉर्मूले, आपको एक नंबर असाइन होता है मैथ के फॉर्मूले में डलता है और आपकी लक आपकी विन का फैसला करती है. और आज की हमारी लकी विनर है हमारी कॉलर जिनका नाम है श्वेता दत्ता. श्वेता कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये टिकट टू रास गरबा 2026. वी हैव योर नेम एंड इन्फॉर्मेशन. प्लीज लुक आउट फॉर दैट कॉल दैट यू विल रिसीव होपफुली वेरी सून. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया. एज आई ऑलवेज से, मेरे लिए तो आप सब विनर हैं. आप टाइम निकालते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दैट शोज योर लव फॉर अस. थैंक यू.

जी हाँ, कुछ राज गरबा के खूबसूरत गाने आपसे पूछे थे जो बॉलीवुड में बड़े मशहूर हैं, और आप सब ने बड़ी प्यारी प्यारी हमें अपनी प्लेलिस्ट से गाने निकाल के बताए. वैसे कुछ जो टॉप 5 गाने जिन्हें कंसिडर किया जाता है गरबा के लिए बॉलीवुड से, वैसे तो प्राइवेट भी बहुत होते हैं, दैट इंक्लूड्स ढोली तारों जो कि नंबर 1 पे लोगों की पसंद में आता है, इसी के साथ नकारे संग ढोल जो कि गोलियों की रासलीला रामलीला से है, उसके साथ चौगाड़ा तारा जो कि लव यात्री से है, और फिर ढोली फ्रॉम गंगूबाई काठियावाली. और इंटरेस्टिंगली एक गाना जो कि बार बार लिस्ट में आ रहा है वो है काय पुछी का शुभारम. ओ शुभारम, इसको भी हम मतलब लोगों ने वोट किया. मैं देख रही थी कि व्हाट इज द वोटेड और मोस्ट प्लेड सॉन्ग्स ऑन गरबा फ्रॉम बॉलीवुड. तो ये आपके लिए एक टॉप 5 की लिस्ट मैं लेके आई थी. अच्छा जी, इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं. गाने बहुत सारे हमारे पास रेडी हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली हमारी कम्युनिटी को सर्व कर रहा है. नाउ दे आर ग्रोइंग एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन. दिस इज लिनॉक्सी मेडिकल. Founded by Dr. Mandeep Acharya, Lanoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing ho, aapko x-rays karane hain, CT scan karana hai, cardiac diagnostic hai, sab kuch under one roof aapko milega. Aur yahi nahi, balki they also have Himalayan med spa services at the same location. To mazeed aapka under one roof ki definition badh gayi hai ji. Open 7 days a week for you, 8 AM till 8 PM. That is Sone Pe Suhaga. So, aur ek aur Sone Pe Suhaga khabar ye hai ki aapko koi appointment nahi leni, it is walk-in. So please visit Lanoxy Medical, LUNOXY Lanoxy Medical. This is your next stop to take care of your health.

इसी के साथ अगर आप सोच रहे हैं टू बाय और सेल योर हाउस या फिर आप प्लान कर रहे हैं योर नेक्स्ट मूव तो कनेक्ट कीजिए नवनीता खेमका से. शी इज अ रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी विद मार्केट नॉलेज. क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनके पास और देती हैं आपको पर्सनलाइज गाइडेंस. नवनीता इज कमिटेड टू मेकिंग योर रियल स्टेट जर्नी स्मूदर बिकॉज एवरी होम हैज अ स्टोरी और आपके घर की वो शानदार स्टोरी की शुरुआत कीजिए नवनीता खेमका के साथ. शी विल क्रिएट योर ब्यूटिफुल यू नो द ड्रीम ऑफ योर ब्यूटिफुल होम. She will create it with you. आपको पर्सनलाइज strategies देंगी, आपको step by step guide करेंगी. आप उन्हें call कर सकते हैं 347-449-4242. Once again, the number is 347-449-4242. This is Navneeta Khemka, Realtor with Keller Williams Realty. Give that a call.

0: With that, it is time now to head on a short break. जब हम आएंगे ब्रेक से वापस तो मैं लेके आऊंगी आपके लिए वेदर अपडेट. उसी के साथ आएगा करेंसी अपडेट, गोल्ड प्राइस अपडेट और ट्रैफिक. बहुत कुछ है आपके लिए लाइंड अप. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
0: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
6: Kaise?
0: Page 3 eatery?
6: No, not another restaurant again.
0: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
7: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.
8: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
4: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
11: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
4: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
12: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
13: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
12: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
13: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
14: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
14: Barista House, richness of biryani bliss.
4: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
15: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Funasia Radio.
16: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funasia Radio.

0: 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो में मैं किरण आपके साथ मौजूद हूँ 6:30 बजे तक. और जी अब वक्त आया है आपको वेदर अपडेट देने का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन. सबसे पहले हम सिटी ऑफ मिकनी का आपको बताती चलूँ जी. 80 डिग्रीज है इस वक्त सिटी ऑफ मिकनी में, इट फील्स लाइक 80 एज वेल. जगह जगह बारिश है, गरज चमक के साथ हो रही है. पोलन काउंट इज 9.1 जबकि यूवी इंडेक्स इज 7. अब तो खैर ऑलमोस्ट 2-1.5 घंटा रह गया है सनडाउन में. सनराइज आज का हुआ 7:19 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 7:12 PM. और आपको बताती चलूं डालस फोर्ट वर्थ एरिया में, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. द बिग वेदर स्टोरी अक्रॉस DFW एंड मच ऑफ नॉर्थ टेक्सस इज हैवी रेन एंड पोटेंशियल फ्लडिंग. ऑफकोर्स हम सभी को ये मालूम है द नेशनल वेदर सर्विस हैज अ फ्लड वॉच इन इफेक्ट फ्रॉम दिस आफ्टरनून थ्रू फ्राइडे मॉर्निंग फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल टेक्सस इंक्लूडिंग द डालस फोर्ट वर्थ एरिया. कॉलन काउंटी, डेंटन काउंटी, टैरेंट काउंटी, डालस काउंटी, रॉकवॉल, Kaufman and the surrounding areas as well. So we could expect or see multiple rounds of showers and thunderstorms with some storms producing heavy rainfall in short period of time. National Weather Service ka ye kehna hai, it says that widespread rainfalls of roughly 2 to 4 inches in possible areas and localized amounts of 5 to 7 inches are also possible. Exactly where the heaviest rain falls will determine ke kahan pe flooding hogi. Ab is gaane ke baad main aapko bataungi thunderstorm threats kya hain hamare aur hame kaise cheezon ke bare mein careful rehna hai.
1: Brothers for life, Mika Singh.

0: अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट है कोई, तो ये सिचुएशन ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है. वन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, और उसी के साथ यू हैव टू डील विद द इंश्योरेंस कंपनीज, द पेपर वर्क, इफ यू आर फाइलिंग अ केस, द लीगैलिटीज ऑफ द सिचुएशन. सो आपको एक ऐसा अटर्नी चाहिए जो आपके लिए ये सारे काम कर सके वाइल यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. नॉट ओनली विल दे फाइट योर केस for you, they will help you get the best compensation that you deserve. और जो सबसे important बात है वो ये कि आपको कुछ pay नहीं करना जब तक कि आप इस केस को जीत नहीं जाते. सो परेशानी की इस सिचुएशन में आपको राहत की खबर दे रही हूँ. अटर्नी उमर ख्वाजा से कॉन्टैक्ट कीजिए फॉर दैट कंसल्टेशन. दैट नंबर इज 4693005046. गिव देम अ कॉल, सी वेयर यू स्टैंड, और यू कैन ऑल्सो विजिट देयर वेबसाइट अटर्नी उमर OMAR. AttorneyOmar.com. We are heading on to a short break. I'll see you after the break.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Eat it!

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: 5 to 8 straight from the heart. Girl, Hindi bol.
2: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
3: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
1: Phone uthaye, number dabaye.
2: 347-449-4242.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
6: लैपटॉप में।
5: इन्वेस्टमेंट?
6: गूगल ड्राइव।
5: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
6: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
5: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
7: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
8: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
7: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
9: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
12: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, FunAsia.
14: This is Uday Chopra and you are listening to FunAsia Radio.
15: कितने आदमी थे?
16: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

And with that, it is time to give you the gold price update. According to goldprice.org, is waqt, yani ke Wednesday, September the 30th, 6:13 p.m. in the studio, gold price per ounce hai $4,152.43. Jabki ek gram sone ki keemat right now is $133.50. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 12 सेंट का इजाफा हुआ यानी कि 12 सेंट्स जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $3.85 का इजाफा हुआ दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स विद मी दैट इज सुनहरी किरण

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, सुइट 205, फ्रिस्को।
2: दैट गरबा वॉज टोटली वर्थ इट, वी हैड सो मच फन।
3: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट। Where can we eat now?
2: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
4: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट, रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
11: नेक्स्ट क्वेश्चन।
10: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
11: याद नहीं।
10: बफे में क्या था?
11: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
1: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 9729055449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर। हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
12: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
13: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 PM to 7 PM for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.

भाई वी ऑल लव अ लिटिल बिट ऑफ रेन. यस डोंट वी. मतलब बारिश भी एकदम, रास्ते भीग तो जाते हैं लेकिन वो मिट्टी की जो खुशबू आती है ना, भीगी हुई मिट्टी की खुशबू, आह दैट इज सो अमेजिंग. व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट बारिश इज द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक यू गेट. इट इज सो पेनफुली अनोइंग. हाउएवर वी काइंड ऑफ हैव टू लिव विद इट, डोंट वी? आई मीन दिस इज व्हाट इट इज. तो जैसे मैंने बोला था, टुडे आई एम गोना डू अ बारिश स्पेशल, लेकिन वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन, द वन दैट वी हैव नॉर्मली आफ्टर अराउंड 8:30, विच इज अबाउट डेटिंग एंड लव एंड रिलेशनशिप्स. एंड वी गोना टॉक अबाउट, लाइक जैसे वी विल कंटिन्यू अबाउट आवर डिस्कशन अबाउट हाउ टू अप्रोच पीपल दैट यू डोंट नो, मे बी इन अ ग्रोसरी स्टोर, मे बी एट अ जिम, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स इज समथिंग दैट अनफॉर्चुनेटली द साउथ एशियन कल्चर डज नॉट टीच यू प्रॉपरली. आई मीन देर आर, यू नो, साउथ एशियंस आर क्रिटिसाइज फॉर स्टेयरिंग ऑल द टाइम और लाइक जस्ट सेइंग ऑकवर्ड थिंग्स या फिर यू नो गिविंग नो पर्सनल स्पेस. सो दोज आर थिंग्स दैट वी विल टॉक अबाउट, स्पेशली सिंस आई गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम गाइज हु आर लाइक, हे वी आर ट्राइंग टू डेट बट वी कॉन्ट, वी डोंट हैव एनी लक. सो आई एम गोना गिव यू सम टिप्स एज अ गर्ल वॉट वर्क्स एंड यू कैन ट्राई डाउन एंड सी इफ इट एक्चुअली वर्क्स. लेकिन उसके पहले वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक इन अबाउट 1 मिनट. तो मैं थोड़ा सा ये गाना चलाती हूँ एंड वेन यू कम बैक ये गाना कम्प्लीट हो जाएगा. लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा ये गाना इन्जॉय करिए.